आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। ये जो सॉन्ग अभी चल रहा था लहरा के बलखा के, देखिए जितना लहराना है बलखाना है वो ठीक है, डांस फ्लोर पे काफी सही है, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल भी लहरा के बलखा के ना चले, नजरे ट्रैफिक लाइट्स पे और सामने रोड पे होनी चाहिए। बट फिर भी अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आप सही चल रहे हो बट आपके आसपास वाले या आपके पीछे वाले या आपके आगे वाले जो हैं गाड़ी सही से नहीं चला रहे हैं और कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो अनफॉर्चुनेटली, देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू। आपको अमर ख्वाजा को कॉल करना है क्योंकि वो आपका केस लड़ने में आपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ दिलाएंगे आपको कॉम्पनसेशन जो भी आप डिजर्व करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से भी वही डील कर लेंगे। ये सारा स्ट्रेस जो है अब उनकी ड्यूटी है, उनकी टेंशन है, आपको बस अपने हेल्थ पे फोकस करना है और अपने मेंटल पीस पे, और आपको तब तक पे नहीं करना है जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। अगर आपको अटर्नी उमर ख्वाजा के साथ एक फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4693005046 या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, which is attorneyomar.com।

क्या आपको भी अपने ड्रीम होम के सपने को याद करते हुए ऐसा लगता है कि यार काश आप, मतलब आपका सपना और आपकी हकीकत भी एक हो जाते, हम हम हम। लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक एप्ट सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ड्रीम होम मॉर्गेज लेके आए हैं आपके लिए सिंस 1998। वो बाकी फैमिलीज की भी हेल्प करते आए हैं और उनके होम ओनरशिप के सपने को रियलिटी में बदला है उन्होंने। तो अगर आपका भी कोई ऐसा अपना प्यारा सा घर का सपना है तो ड्रीम होम मॉर्गेज से जरूर संपर्क करें। इनके पास सारे के 50 स्टेट्स ऑफ यूएस हर जगह पे इनके पास लाइसेंस है और इनकी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऑफकोर्स 1998 से ये जो है सर्विसेज में है। तो अगर आपको घर चाहिए या फिर उसके लिए कोई लोन ऑप्शन चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो भी ये आपकी मदद कर देंगे ड्रीम होम मॉर्गेज। तो चाहे आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं, अपना घर अपग्रेड कर रहे हो या फिर रीफिनेंसिंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ड्रीम होम मॉर्गेज से जरूर कांटेक्ट में आइए। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं एट 972-245-5626 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज dreamhomemortgage.com, जहां पे आपको इससे भी ज्यादा अधिक डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको मौका मिलेगा अपने सपने को हकीकत में बदलने का।

0: वैसे एक और चीज है जो आजकल काफी हिट चल रही है और वो है Page3E3। डैलस का ये नया फ्लेवर हब बन गया है और लोकेटेड भी है एट Hub 121। तो Page3E3 वो जगह है जहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड ना मॉडर्न फ्लेवर के साथ एक मतलब ऐसा खतरनाक मिक्स होता है और फिर बनता है कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स। यहाँ की वाइब्स भी काफी वाइब्रेंट है, चाहे आपको ब्रंच के लिए जाना हो, लंच के लिए जाना हो या फिर समय क्या हुआ है, डिनर। जी जरूर, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आपको डिनर पे कहाँ जाना है, अक्सर हम गाड़ी में तो बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यार गाड़ी में डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, तो चलिए मैंने आपकी आज की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दी है कि आपको Page3E3 जाना चाहिए। और अगर आपको चेक करना है कि क्या है मेन्यू में ऑप्शंस वगैरह, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, तो आप उनके वेबसाइट पे चले जाइए, विच इज Page3E3.com।
1: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो,
1: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म।
0: सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
3: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
4: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
5: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
4: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी अभी एक इंटरेस्टिंग सा गाना चल रहा था कि जिक्र द दिला दू तुझे बुर्ज खलीफा। कौन है यार आप लोग, मतलब कौन दिला रहा है बुर्ज खलीफा? मतलब मुझे भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के आशिक मजनू लोग जो है चांद तारे तोड़ लाऊंगा, अब वहां से थोड़े रियलिस्टिक तो हुए हैं, मतलब थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा पे अटक गए हैं। भाई बुर्ज खलीफा जो है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, अभी बहुत नीचे आना है आपको ताकि और थोड़ी रियलिस्टिक बातें हो सके, प्रैक्टिकल चीजें आप जो है गिफ्ट कर सके अपने लव्ड वंस को। और हम इंतजार करेंगे कि आप थोड़ा और नीचे आए और हमसे फिर से वैसी ही मोहब्बत भरी बातें और गिफ्ट्स के बारे में बात करें। वैसे वक्त हो गया है अभी एक इंटरेस्टिंग गिव अवे राउंड का, लेकिन उसके पहले ना एक प्यारा सा छोटा सा गाना बजा देते हैं। बाकी इस गाने के बाद आइएगा और फिर खेलेंगे हम अपना गिव अवे राउंड।

0: रसैया साइकिल।
1: लेट्स बिगिन आवर गिव अवे राउंड। और मैं इसके पहले की क्वेश्चन पूछूं, मैं बता देती हूं कि अगर आप ये गिव अवे जीतते हैं तो आपको मिलेगा फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार की तरफ से अमेजिंग डिशेस खाने का मौका। और ये जो फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार है वो रिचर्डसन में काफ़ी पॉपुलर है, लोगों ने पसंद किया है यहाँ का खाना, और इसीलिए अब वो एक नए लोकेशन में आ रहे हैं अर्विंग में, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं डिलीशियस 25 आइटम लंच बुफे एवरी डे फीचरिंग चाट्स, तंदूर प्लैटर्स, एक्जॉटिक फ्लेवर्स एंड फेवरेट्स जैसे कि श्रीरागा सांबा मटन बिरयानी, एप्रिकॉट मलाई कोफ्ता, चिली पनीर बाव, बुर्राटा चिकन टिक्का, और भी बहुत कुछ है। और अगर आपको अला कार्टे पसंद है, अगर आपको चाहिए कि कोई आपको यू नो टेबल वगैरह पे ला के दे, तो भी ये अवेलेबल है, सो डू नॉट वरी। ये लोकेटेड है एट 8080 वॉल्टन बुलवर्ड में, अर्विंग में, और वही फेमिलियर फ्लेवर फैबुलस फ्यूजन अब आ रहा है अर्विंग में, तो बहुत ही एक्साइटिंग है। बता दो कि अगर आप ये गिव अवे जीतेंगे तो आपको मौका मिलेगा फ्री श्रीरागा सांबा या फिर दम मटन बिरयानी, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल दम बिरयानी जीतने का मौका। सवाल बहुत ईजी होगा, सिंपल सा होगा, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको दूंगी एक वर्ड और आपको उस वर्ड से मुझे तीन बॉलीवुड सॉन्ग्स के नाम बताना है, मतलब या तो वो बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है उसी वर्ड से शुरू होते हो और एटलीस्ट उनके पहले सेंटेंस में वो आता हो, ठीक है? रेडी? तो आपको बताना है

0: मुझे तीन बॉलीवुड सॉन्ग्स के नाम बताना है, मतलब या तो वो बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है उसी वर्ड से शुरू होते हो और एटलीस्ट उनके पहले सेंटेंस में वो आता हो. ठीक है, रेडी? तो आपको बताना है तीन सॉन्ग्स स्टार्टिंग और यू नो फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस विद द वर्ड आज. आज यानी टुडे, आज इज द वर्ड. और आप मुझे कॉल कर सकते हैं एट 972-235-5555 एंड इट्स काइंड ऑफ फिंगर फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट. तो कम ऑन गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल.
1: Wanna natural night? Do you feel alright? Wanna natural night?

देखिए पार्टी तो फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार में ही होगी, क्योंकि जो गिव अवे था वो उन्हीं की तरफ से था। और पार्टी करेंगे कौन वो मैं बता देती हूँ, प्रिया करेंगे क्योंकि उन्होंने जीता है आज का गिव अवे। हमने आपसे पूछा था वो 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स जिसमें की वर्ड आज यानी कि टुडे आता हो, और बहुत सारे कॉल्स आए। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बहुत लोगों ने ऐसे ब्यूटिफुल सॉन्ग्स रिकमेंड किए हैं, रिमाइंड किए हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि बस इसी वर्ड पे गाने बजाते रहो। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, आपको मिल चुका है फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार की तरफ से फ्री सिरागा सांबा या फिर दम मिटन बिरयानी, या फिर अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल दम बिरयानी भी आपका हुआ। डू एंजॉय। और रमनप्रीत जो है वो काफी रमनीत काफी क्लोज थी विनिंग दिस, एंड उन्होंने उनके लिए जो है मैं ये नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: 90s के गाने सिर्फ hits नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 2148692668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। और मुझे भी ना आप पे हर वक्त प्यार आता रहता है, स्पेशली तब जब आप मुझे कॉल करके गिव अवेज के लिए आंसर बताते हो या फिर मुझे फीडबैक देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि लास्ट गिव अवे हम कर रहे थे, 3 सॉन्ग्स हमने पूछे थे फ्रॉम दी वर्ल्ड आज, और बहुत सारे लोगों ने कॉल किया इवन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस सेगमेंट। अभी तक मुझे कॉल आ रहे थे, यू नो, आज से ना ये सॉन्ग है, आज से ये सॉन्ग है। तो हमने ट्राई किया कि जितने भी सॉन्ग्स हम बजा पाए और हमने बजाए, और इस एनर्जी को सलाम। और मुझे तो बहुत ही पसंद है, लाइफ हमेशा एनर्जेटिक होनी चाहिए। तो एनर्जी अगर आपके आरजे में है, आपके लिसनर्स में है, तो कमाल की बात है, दोनों का एकदम एनर्जी मिलके कमाल कर सकती है। वैसे कोई और भी है जो ढेर सारी एनर्जी लेके आया है, एंड दैट्स तारा कमर्शियल एनर्जी। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको चाहिए एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, देन तारा कमर्शियल एनर्जी इज द राइट स्टॉप फॉर यू, क्योंकि वो टेक्सस बिजनेसेस को हेल्प करते आ रहे हैं सिंस 2002। क्योंकि और इतना लंबा सर्वाइव आप तभी कर पाओगे अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हो और रेट्स कॉम्पिटेटिव हो, या फिर आपका जो है एनर्जी प्लान काफी बढ़िया हो। और ये तो कस्टमाइज एनर्जी प्लान भी देते हैं। तो अगर आपको इनकी सर्विसेज चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8444282808, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज taraenergy.com।

द लास्ट सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है। और क्या आपको पता है कि इस मूवी में जो स्टार्स थे वो नंबर ऑफ स्टार्स 3 नहीं 4 थे। जो 3 पॉपुलर स्टार्स थे और ज्यादा स्क्रीन टाइम जिनको मिला था उनमें से थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित एंड करिश्मा कपूर। लेकिन उनके अलावा भी एक एक्टर थे जो कि कंटेम्प्रेरी थे शाहरुख खान के, और अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको पता है कि वो कौन है तो डू लेट मी नो। वैसे ये किसी गिव अवे के लिए नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। तो अगर आपको पता है, आप मुझे बताना चाह रहे हैं, तो कॉल कर लीजिए 972-235-5555। और क्लू ना नेक्स्ट सॉन्ग में भी है, डू लेट मी नो।

मैंने आपसे इस सॉन्ग के पहले पूछा था कि जो दिल तो पागल है मूवी है, उसमें फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है अपार्ट फ्रॉम शाहरुख, माधुरी एंड करिश्मा। और असीम जी का कॉल आया, उन्होंने फटाफट बता दिया कि भाई वो तो अक्षय कुमार है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हिंट नेक्स्ट सॉन्ग यानी कि एयरलिफ्ट से अभी जो हम बजा रहे थे सोच ना सके वही था, और अक्षय कुमार है उस मूवी में एज लीड एक्टर। तो यस गाइस, दैट वॉज दी करेक्ट आंसर। और इसके अलावा हमें एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है टू प्ले तू चीज बड़ी है मस्त मस्त फ्रॉम राजू। सो राजू, आपकी जो फरमाइश है ना वो सर आंखों पे, और स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि भाई ओरिजिनल फ्रॉम मोहरा बजनी चाहिए, फ्रॉम द मूवी मोहरा। तो बिल्कुल हम कोई रिमिक्सिंग नहीं करेंगे, कोई मिलावट नहीं करेंगे, डू एंजॉय इट एज इट इज।

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: बेटा 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: फ्लोर्स क्लीन
7: चेक,
6: विंडोज क्लीन
7: चेक,
6: किचन क्लीन
7: चेक,
6: एयर डक्ट्स क्लीन।
7: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
8: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
10: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Phanasia.
13: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Phanasia.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी आपका और मेरा ना साथ अभी आधे घंटे का है बाकी, और काफी अमेजिंग शो रहा है आज का। बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारा मजा आया है। और एक बात बताओ कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स और फैमिलीज ही हैं जो हमारी केयर कर सकते हैं, लेकिन कोई और भी है जो आपकी केयर बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह और फ्रेंड्स की तरह करते हैं? एंड इट इज़ टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक, जो कि अपनी कम्युनिटी की केयर करते आए हैं 13 ईयर्स से। और अब वो लेके आए हैं एक नया नाम और एक नया लोकेशन फ्रिस्को में, विद द नेम लनॉक्सी मेडिकल। इट इज़ फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। और जो सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं वो मैं बता देती हूँ। प्राइमरी केयर अवेलेबल है, अर्जेंट केयर अवेलेबल है, इन हाउस लैब टेस्टिंग है, एक्सरेज है, सिटी स्कैंस है, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स है, और तो और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी अवेलेबल है। सब कुछ एक ही छत के नीचे। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और भी वो भी बता दे रही कि ये ना वीक के 7 डेज ओपन रहते हैं, मतलब 7 दिन ये खुले हैं। आप कभी भी जाइए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इनके जो है सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है और आपको मन हो रहा है कि यार स्पा करा लेता हूं तो भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे वॉक इन बहुत ज़्यादा वेलकम्ड है, तो आप ज़रूर जाइए, आपको अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है।

द फ्लेवर लाउंज लेके आए हैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, स्पेशल सर्विसेज. ये ऑफर कर रहे हैं वीकेंड लंच बुफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलीशियस डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल्स और फ्रेश फ्लेवर्स, जो कि आप बार बार उसको ना एक बार खा के दोबारा तिबारा बार बार आप वहाँ पे जाओगे फ्लेवर लाउंज पे. और ये सब कुछ अवेलेबल होगा ओनली एट $24.99 पर पर्सन. तो आप ये बुफे जरूर इंजॉय करें. सैटरडे और संडे को अवेलेबल होता है 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर के टाइम पे 3 घंटे के लिए. तो आप अपने फैमिली को लेके जाइए, फ्रेंड्स को लेके जाइए और अपना वीकेंड जो है डिलीशियस बनाइए, एंजॉय कीजिए पूरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ओनली एट द फ्लेवर लाउंज. और इसका लोकेशन है

फ्रेंड्स को लेके जाइए और अपना वीकेंड जो है डिलीशियस बनाइए, इंजॉय कीजिए पूरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ओनली एट द फ्लेवर लाउंज. और इसका लोकेशन है 5855 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में, द फ्लेवर लाउंज, जहां आपको मिलेगा गुड फूड एंड गुड मेमोरीज.

भाई माइंड ब्लोइंग तो वो है जिन्होंने अभी अभी कॉल करके जो है मुझे दो अमेजिंग सॉन्ग्स रिकमेंड किए, जिनमें से एक मैंने प्ले कर दिया माइंड ब्लोइंग माहिया, और जो दूसरा वाला है वो भी प्ले करने जा रही हूँ। लेकिन आपको बता देती हूँ कि हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही अमेजिंग थी। उनका नाम डीजे और मैं आरजे, तो हम दोनों जब मिलते हैं ना तो ऐसा पत्थर भी सोना बन जाता है। तो वो उनको थोड़ा याद आने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि अरे यार उस मूवी में गोविंदा है और करिश्मा कपूर भी है, काफी फेमस सॉन्ग है। तो भाई अगर ये दोनों है तो इनका बेस्ट सॉन्ग अभी आपके दिमाग में भी आ ही गया होगा कि गोविंदा ऐसे आते हैं स्टाइल मारते हुए एकदम मस्त सूट बूट पहन के, और करिश्मा कपूर जो है वो फ्रॉक एकदम उस टाइम का आइकॉनिक ड्रेसेस जो उन्होंने इस मूवी में पहने, में क्या बताऊं वो अभी तक फेमस है। और वो लोग दोनों ऐसे फॉरेन लैंड में डांस कर रहे हैं कि सोना कितना सोना है, और इसका रिमिक्स वर्जन हम बिल्कुल नहीं बजाने वाले, ओरिजिनल ही बजेगा। तो Guys, do enjoy it.

देखिए अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा सैटरडे को अगले 6 से 9 बजे तक होता है हमारा शो। आई होप यू गाइज लाइक डेट। और जाते जाते दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या है ना, मेरा भी हीरो नंबर वन यानी मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं, तो जाना पड़ेगा। दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड टिल देन एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए। टेक केयर गाइज, वी विल मीट सून। ओके।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, because the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights be.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, because miracles happen in Mirage.
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
8: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
8: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
6: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: साथिया। कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
13: तुमसे मिलके दिल का है.
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
2: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
6: Hi, this is Stephanie Hunt. You are listening to Fun Asia Radio.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
6: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
7: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club Fun Asia Revolution and let the good times roll.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

ऐसा नहीं चलते प्यार सोनिए, ऐसा नहीं चलते प्यार, ऐसा नहीं चलते।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: आनंद
1: लगे रहो।
2: I love you।
3: आनंद तेरा फोन आया यार।
0: और
3: चल चल।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त।
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
3: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax।
2: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा
3: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
4: रुको जरा, सबर करो।
5: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: That's right. Pump it up.

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Desi Swag. Desi Swag. Bollywood Tag. Fun Asia. Fun Asia.
1: जिद शर्दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी ता तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं ज्योंदी करूंगा हॉकी।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
5: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, only on Funasia Radio.

0: जा पहला साता लैला
1: मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड
2: The Dill of Dallas. Heart to heart. Funny.

0: 104.9 FM Fun Asia. Fun Asia. Fun Fana Fun Dun.
1: आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है।

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: Praveen, what is this? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर. वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी.

0: ले लीजिए, बताइए कहाँ ले जाए?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटना एग्जाम ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना।

0: कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: के ऑफिसर्स का नहीं, उनकी बीवियों का बात करना जरूरी है।
1: बोरिंग दिनचर्या में
2: घोलिए नए रंग फनेशिया रेडियो के संग।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: गोली
1: बोल बचन की वाणी
0: शाणी
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
3: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
4: Jawan, durbin se taake wo apna nishan. O Tayyab, tell me how, how. O Tayyab, tell me how, how. O ladki teri taj mahal si hum kare wow, wow.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the show. It's a lovely Monday morning and the last day of the month of August. Let's go ahead and get started with our program. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai. Chaand sitare banai, zameen aasmaan banai. Insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko, और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम. वेलकम टू द शो.

0: Some messages from our sponsors.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Hocho.
8: Hoko.
7: Hocho.
8: Hoko.
7: Hocho.
8: It's Hoko.
9: अरे बस भी करो यार.
8: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
9: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉर्गेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Floors clean.
12: Check.
11: Windows clean.
12: Check.
11: Kitchen clean.
12: Check.
11: Air ducts clean.
12: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
13: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
14: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
14: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
14: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
15: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
14: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
11: We need to talk.
16: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
16: Oh no.
11: It's the distance.
16: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arre, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Sadia.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
19: तुमसे मिलके दिल का है.
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: We're going to go into a quick break here to round off this hour of the program. I have another very busy hour coming up for you. For those of you who'd like to reach me during this break, the number here is 972-235-5555. Stay with me and we'll have you entertained and informed right at 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
8: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
9: ये तारा वो तारा हर तारा
10: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
11: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
11: कहाँ
12: फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी केटरिंग सर्विसेज प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
1: फूडिस्तान इन ऑबरी मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट
13: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
14: लैपटॉप में
13: इन्वेस्टमेंट
14: गूगल ड्राइव
13: इंश्योरेंस पासवर्ड्स
14: बेटा डोंट वरी मुझे सब पता है
13: डैड वही तो प्रॉब्लम है सिर्फ आपको पता है
15: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
16: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
15: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
17: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
18: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
20: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
19: सच में सब संभालेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
21: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो.
0: Let's get started with this hour of the program. I will have the world news for you coming up in the half hour segment. Before that, let's tell you what went on today's date, which is the 31st of August. Some stories from the annals of history. Al-Bukhari died on today's date in the year 870 near Samarkand, one of the greatest Muslim compilers and scholars of the Hadith. The recorded corpus of the saying and acts of Prophet Muhammad. His chief work is accepted by Sunni Muslims, those following the majority tradition, as second only to the Quran, as both a source of religious law and a sacred work.

0: ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक।
1: सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी।
2: जहांगीर वॉज बॉर्न ऑन टूडेज डेट इन 1569 इन फतेहपुर सीकरी इन इंडिया।
0: इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो।
2: Prince Salim was the eldest son of Emperor Akbar, who early marked him to succeed him. That was a clip from Mughal.

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
7: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
8: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
7: एंड पिस्ताचियो लैम चॉप्स,
8: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
9: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, अब डैलस में।
1: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
10: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
12: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
13: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
13: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
13: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
1: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
14: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
16: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
17: For those of you who are just joining us, please receive my very warm welcome to this final hour of the program right here on the airwaves of the Fun Asia Network. Let's go ahead and start the week off as we end the month of August. 46 days we've been without any measurable rain as the fires are raging in many areas. 101 is what we touched yesterday and probably today. Also, the grass fires do bring danger and that continues. So please make sure that you all are careful. We had in the year 2000, 84 days without rain. We are at 46 now, so really not that bad. And we are losing 2.5 minutes of daylight every single day as we move towards the month of September.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
12: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: That's my show for today. Y'all continue listening to the Fun Asia Network right at 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
4: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
3: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
4: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबब्ली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
5: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
9: Ocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: Hoko.
9: Ocho.
10: It's Hoko.
11: Arre, bas bhi karo, yaar.
10: Arre, naya restaurant hai, but naam samaj hi nahi aa raha hai.
11: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
12: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: We need to talk.
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
3: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
0: सिंपल, बसेरा ग्रैंड. वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
6: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
0: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
6: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.

जी हाँ लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. दिस इज योर होस्ट पारुल भाटिया सिटिंग इन टुडे फॉर मी टू. मी टू हैड समथिंग दैट केम अप एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज नॉट हियर टुडे. आई विल बी कवरिंग हर शो एंड एज ऑलवेज लिसनर्स, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर विद यू टू प्ले सॉन्ग्स. आई विल बी टेकिंग इन योर रिक्वेस्ट एज वेल. बातें होंगी, कुछ ना कुछ गिव अवेज होंगे और आपके लिए ऐसे गाने मैं प्ले करना चाहती हूँ जो कि आजकल न्यूज़ में हो रहे हैं. तो कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ रही हैं. ऐसी एक फिल्म आ गई है एज इन लाइक दे हैव मेड अ बज. तो एक ऐसी फिल्म आई है, उस फिल्म का नाम है टॉक्सिक. इसमें है यश जो कि साउथ से हैं, कियारा अडवानी हैं, तारा सुतरिया भी हैं. और ये फिल्म का जो पर्टिकुलर गाना है, इट्स डूइंग वेरी वेल. इनफैक्ट मैं बताऊंगी कि हाउ दिस फिल्म हैज़ रीच्ड अ सर्टेन क्लब, जो कहते हैं ना कि करोड़ों वाला क्लब ये पहुंच गई है. रूमी ने कहा है, और ये इस फिल्म से लिया गया है ये कोटेशन, क्योंकि दे हैव मेंशन दिस पर्टिकुलर कोटेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड इट सेज आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज अ फील्ड आई विल मीट यू देयर. दैट्स प्रीटी पावरफुल. With that, I'm going to play the song for you. And ये गाने का नाम भी कुछ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा है. नाम है गाने का तबाही. Here it is for you.

at the box office. Toxic, a fairy tale for grown-ups is the name of this full film, is experiencing a polarizing run characterized by a blockbuster opening day followed by a steep downward spiral due to a mixed word of mouth. But at the same time, जो इसका जो वो हो गया है, जो इसने join कर लिया है, वो club, जो करोड़ों का club है, 250 crores इसने total box office में कमाए हैं worldwide, not just India. And falling, of course, massive था first day का इसका जो release था. So then it went down a little bit, but it's picked up again. So this is what's going on with this. And as far as other things, the cast, as I mentioned to you, cast is all star, it's star-studded cast is the word for it. Kyunki jo South ke Yash hain, he's playing Raya. Then there is Nayanthara who's playing Ganga. And then there is Daryl De Silva as Salvador. Tara Sutaria is Rebecca. And Kiara Advani is Nadia. Isme supporting cast bhi hai, Huma Qureshi, Nawazuddin Siddiqui and Rajiv Sen. तो साउंड्स इंटरेस्टिंग. अगर समथिंग थोड़ा हटके देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐसी फिल्म लग रही है कि मज़ा आएगा. और इसके साथ साथ एक और गाना मैं आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूँ. दैट डिड रियली रियली वेल, दिस सॉन्ग डिड वेरी वेल. तानिश्क बागची का म्यूज़िक है, नेहा कक्कड़ की आवाज़ है और ये फिल्म थी KGF. इसमें मोहिनी रॉय भी हैं. लेकिन ये गली गली मैं बाद में प्ले करूँगी. इससे पहले गली गली इज़ ऑफकोर्स वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो हमेशा मज़ा आता है सुनने में. लेकिन ये गाना जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, इसमें थी जिसे कहते हैं ना क्रश ऑफ द नेशन, तृप्ति डिमरी, राजकुमार राव और मेरे महबूब, ये फिल्म का ये गाने का नाम था. जहाँ गानों की इतनी बात हो रही है लिसनर्स, बता दूँ, आर यू रेडी फॉर सोनू निगम शो? इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन. इंडीड, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. The one and only Sonu Nigam live in concert. Experience revolution and mark your calendar. It's Saturday, September 26th at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. And for more information, call 855-360-SHOWS. Revolution Sonu Nigam live. Exclusive media partner, Fun Asia Network.

अभी थोड़ी देर पहले हमने गाना सुना टॉक्सिक से, और अभी हमने गाना सुना ये पर्टिकुलर गाना मेरे महबूब, और बिल्कुल ही अलग अलग सा फ्लेवर था दोनों, एक तबाही था एक मेरे महबूब था, लेकिन हैप्पीनेस दोनों में थी, ठीक ही नहीं लिसनर्स, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवरसेल्व्स, बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी ने कहा है हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी, व्हाइल द फेमस अब्राहम लिंकन हैज सेड फोक्स आर यूजुअली अबाउट एज हैप्पी एज दे मेक देयर माइंड्स अप टू बी. तो चलिए, एंड द गाना आई हैड प्रॉमिस्ड यू वही मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, राइट हियर फॉर यू फॉर योर एक्सक्लूसिव लिसनिंग एंटरटेनमेंट.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: एक और लड्डू ले लो।
4: थोड़ी और बिरयानी।
3: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स। दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
11: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
12: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
13: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
14: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
15: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वेलकम लिसनर्स, राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ अनेशिया रेडियो. बात हो रही थी हैप्पीनेस एंड जॉय की. तो बुद्धा ने कहा है, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. व्हाइल राल्फ वाल्डो एमर्सन हैज सेड, फॉर एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस. ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट. एंड इलिनोर रूजवेल्ट, शी सेड, happiness is not a goal, it is a byproduct of Dallas, a life well lived. So I will repeat that. There was a glitch right there. Happiness is not a goal, it is a byproduct of a life well lived. And you know who has said, if you want to be happy, be? None other than Leo Tolstoy. If you want to be happy, बी. और ये नेक्स्ट गाना भी बहुत ही हैप्पी सा गाना है. और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ हेल्थ है तो वहाँ डेफिनेटली हैप्पीनेस है ही. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहती हूँ मैं आपको. नो हेल्थ इंश्योरेंस, नो इट्स नॉट, इट्स अ पैशन हेल्थ. आउट ऑफ योर नेटवर्क स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. Your membership includes primary care visits, follow-up and preventative care, chronic disease and medication management, telehealth when appropriate, care coordination, plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. And aap iske liye call kijiye. Aap pehle visit kar sakte hain unki website ko, which is passionhealthphysicians.com. या आप कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं 214-666-6259 पे. पैशन हेल्थ, इंडीड आर पैशन, दे से योर हेल्थ आवर कम्युनिटी. इंडीड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंस्पायरिंग. दिस प्रोग्राम इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स एलिजिबिलिटी के लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कैन अप्लाई. तो आप ज़रूर इनको चेक करिए, passionhealthphysicians.com, या आप इनको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 214-666-6259. विद दैट द सॉन्ग दैट विल गेट यू इन अ हैप्पी हैप्पी मूड.

लिसनर्स, इस वक्त मंडे मॉर्निंग को हमारा इंटरव्यू होता है मिस्टर हुसैन पंजवानी के साथ. आज उनके बारे में ये बताऊंगी कि ही इज बिजी टुडे, बट डेफिनेटली आप लोगों के को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट ड्रीम होम मॉर्गेज. यूजुअली हुसैन पंजवानी आते हैं 10:30 बजे, उनसे बातें होती हैं और यही बताना चाहती हूँ कि दिस मॉर्गेज लोन सेगमेंट इज़ विद मिस्टर पंजवानी. ही इज़ फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज. इट्स अ डिविजन ऑफ ब्राजोस नेशनल बैंक विच इज़ लोकेटेड इन कैरल्टन टेक्सस. एंड ड्रीम होम इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स द लोएस्ट rate in real estate available in their areas, whether a person is a first-time home buyer, consolidating outstanding debt, refinancing their home, or maybe they are ready to find their home, a dream home. इन सब के लिए आप मिस्टर हुसैन पंजवानी को आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं. ड्रीम होम मॉर्गेज एंड द प्रोफेशनल टीम विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ फाइनेंशियल सोल्यूशन दैट इज सूटेबल टू मीट योर फाइनेंशियल नीड्स. और इसके साथ साथ आप उन्हें कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी है, घर लेने ले रहे हैं, रीफाइनेंस कर रहे हैं, या फर्स्ट टाइम भी अगर आप घर खरीद रहे हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. हुसैन और शारमीन पंजवानी, उनका नंबर है 4696885626. अगेन दैट नंबर इज 4696885626. यूजुअली जब वो यहाँ होते हैं हम उनसे बातें करते हैं कि आप हाउ मच कैन यू क्वालिफाई फॉर फॉर एग्जाम्पल वेन यू अप्लाई फॉर अ लोन. Then he will also, he talks about importance of pre-qualification. That also plays a factor. And also people ask, if you have a low credit score, how will that affect your chances of receiving a loan or the interest rate? All these clarifications Mr. Hussain Panjwani gives very, very clearly so that your the whole process of buying a house becomes easy for you. And then also, you know, different things like, agar refinance karna hai ghar ko, ya pay off karna hai debt, to kya kiya jaye? आप उनको डेफिनेटली कॉल कीजिए. नंबर मैं आपसे एक और शेयर करती हूँ, 9722455626. हुसैन या शारमीन पंजवानी को आप कॉल कर सकते हैं 9722455626. और उनका वेबसाइट भी मैं आपसे शेयर करूँगी एज वेल एज ईमेल सो दैट यू कैन राइट ऑल दैट डाउन. बट दे आर डेफिनेटली डूइंग अ स्पेशल प्रोग्राम विच इज़ ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर यू डोंट नीड टैक्स, बेसिकली यू डोंट नीड टैक्स रिटर्न्स. सो ये बात उनसे आप डेफिनेटली नेक्स्ट वीक कर सकते हैं कि ये क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसमें टैक्स रिटर्न्स यू विल नॉट नीड. ये सब बातें वो क्लियर कर सकते हैं आपके साथ. वेबसाइट है उनकी dreamhomemortgage.com. वंस अगेन इट्स dreamhomemortgage.com. और उनकी ईमेल है info@dreamhomemortgage.com. एंड हुसैन एंड शारमीन पंजवानी का फ़ोन है 9722455626. तो कितनी अलग अलग चीज़ें ये करते हैं. इट्स नॉट कि भाई अभी घर खरीदना है. आप अगर आपने ऑलरेडी घर खरीद भी लिया है, इवन देन ही विल वर्क विद यू बिकॉज ड्रीम होम इज़ कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स द लोएस्ट रेट इन रियल इस्टेट अवेलेबल इन देयर एरियाज, वेदर अ पर्सन इज़ द फर्स्ट टाइम होम बायर और कंसोलिडेटिंग आउटस्टैंडिंग डेट or refinancing their home, or maybe they are ready to find their new home, a new dream home even. So all these, they will guide you step by step through the process of obtaining a financial solution that is suitable to meet your financial needs. तो कस्टमाइज करके वो आपको हर तरह से हेल्प करेंगे. दे आर सर्विंग द कम्युनिटी फॉर द पास्ट 28 years. That's right, for the past 28 years, a name you can trust, that is Hussain and Charmin Panjwani, 9722455626. And next week, you can actually talk to him. With that, listeners, aage badhte hue, main ek aur gaana aap logon ke liye play kar rahi hoon, aur uske saath saath kuch aur baatein bhi hongi, vaartalaap hogi, yahin rahiye, kahin mat jaiye.

0: ये जो गाना आपने सुना ये भी फ्रॉम द फिल्म तबाही से लिया गया था. तबाही तो गाना है, फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक से लिया गया था. एक और फिल्म जिसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है, अक्टूबर में आने वाली है, और ये फिल्म तो डेफिनेटली एक ट्रिलॉजी है, लास्ट है इस पर्टिकुलर सीरीज में, और इसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगी. इनफैक्ट उसी से रिलेटेड एक गिव अवे भी आने वाला है 10:40 के ब्रेक के बाद. तो व्हाई नॉट आई आस्क यू, आई विल प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म, और अगर आप बता सकते हैं कि ये कौन सी फिल्म है जिसकी ट्रिलॉजी है और इस फिल्म में मेन जो कैरेक्टर्स हैं कौन हैं, तो बस आप एक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, कैरेक्टर्स के लिए नहीं भी बताइए, क्योंकि मैनी टाइम्स यू डोंट रिमेंबर द कैरेक्टर्स नेम बट समटाइम्स वी डू, राइट. जैसे कि रवि, अमिताभ बच्चन हमेशा वो रवि थे, या वॉज इट ऑल्सो विक्की, ऑल दीज नेम्स यू नो हैव स्टेड विद अस, या राज ऑफ शाहरुख खान ऑफ यू नो, और सिमरन, कुछ नेम तो डेफिनेटली रह ही जाते हैं. लेकिन जो मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए गाना प्ले करूँगी उससे रिलेटेड होने वाला है ये क्विज, और गिव अवे भी आने वाला है 10:40 के ब्रेक के बाद. विद दैट लिस्टनर्स, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इस पर्टिकुलर फिल्म से रिलेटेड, आई डेफिनेटली शेयर दैट विद यू. अभी छोटा सा ब्रेक है, और साथ साथ हो रही थी बात हैप्पीनेस की, कि अगर हम ठान लें खुश होने के लिए तो हमें कोई रोक नहीं सकता है. इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, अगर आप सोच लें हैप्पीनेस इट्स बेसिकली लाइक अ वॉर्म पपी, सेज चार्ल्स एम शुल्स. And there is a Swedish proverb which says, happiness shared is happiness doubled. तो इसी बात पे आप शेयर करिए अपनी हैप्पीनेस नेबर से, फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से एक कॉल करके, और जब शेयर करते हैं तो डेफिनेटली हैप्पीनेस डबल हो जाती है, जैसे मेरी हो रही है इस वक्त शेयरिंग दी सॉन्ग्स विद यू. आई एम फीलिंग सो सो हैप्पी. इट्स अ मंडे मॉर्निंग, आई होप यू हैविंग अ वंडरफुल टाइम. आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है, और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
2: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
4: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
2: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
2: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
7: Sadia!
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं, और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
9: वही आवाज
7: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: All right, listeners, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है right here on the airwaves of Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host, Praul Bhatia, this morning sitting in for Me Too. How are you doing? How's your week going, listeners? बहुत ही प्यारा सा डे है आज. आई नो गर्मी तो चलती रहती है, लेकिन कभी कभार ऐसा अच्छी सी फीलिंग आती है ना मॉर्निंग में कि अरे आज तो अच्छा दिन होगा. वैसी सी फीलिंग आई आज कि एंड आई होप आज सच में सबके लिए बहुत ही अच्छा सा दिन हो. वैसे भी आज लास्ट ऑफ श्रावण है, तो मे बी दैट्स व्हाई आज शिव जी का लोगों ने व्रत रखे हुए हैं, या वो व्रत भी नहीं रखते तो सेलिब्रेट करते हैं. फिफ्थ आज श्रावण महीने का पाँचवा है ये, जिसे कहते हैं ना कि डे, इट्स अ वेरी वेरी होली डे टुडे. मे बी दैट्स व्हाई वोक अप विद दैट फीलिंग लिसनर्स. एंड अभी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो क्विज लेके आई हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या मिलने वाला है. और फिर मैं एक गाना प्ले करने वाली हूँ जिसमें आप जीतेंगे. क्या जीतेंगे? वेल, फन पिज़्ज़ा किचन हैज़ लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज़्ज़ा लाइनअप. एंड दीज आर जस्ट पिज़्ज़ास, दे आर अ फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा फ्रॉम द फ्रेश फिएस्टा वेजी. And it's called Veggie to the Fiery Polo Loco, the seafood-packed Senor Cameron. Every bite is bold, exciting, and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors are there, new obsession is there. For more details, you can visit funpizzakitchen.com. And now, here is your chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. And ek simple sa question hai, agar aapne sahi jawab diya to aap log jeet jayenge. Aur uske saath saath main aapki information lungi, for example your email and your phone number, jo ki pahuncha diya jayega FP ke Frisco ko. Ye Frisco is the one that's participating in this particular quiz. To agar aap Frisco se apna pizza $10 gift ले सकते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू पार्टिसिपेट. अगर आप नहीं ले सकते देन डोंट वरी, बिकॉज देन दोज हु कैन गो देयर देन दे कैन पार्टिसिपेट. तो ये क्वेश्चन ये है कि जो मैं गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है ये कौन सी फिल्म से लिया है. इसमें हीरो हीरोइन, मेन हीरो हीरोइन कौन है वो भी इनफ है. और साथ साथ ये जो ये मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दी है कि ये ट्रिलॉजी है, और है नहीं अभी तक दो ही बनी हैं, और थर्ड जो है इस ट्रिलॉजी में वो रिलीज होने वाली है जल्द ही. और ये भी आपको बता सकती हूँ कि ये फिल्म इट डिड वंडरफुल, इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स वेयर यू जस्ट कीप वंडरिंग अब क्या होगा टाइप्स, यू नो देयर इज नॉट अ डल मोमेंट. एंड जो एक्टिंग है इस फिल्म में, ये स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया लिखी है और जो एक्टिंग है वो कमाल की है. स्टूडियो का नंबर है 9722355555 और ये है गाना जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फिल्म एंड द हीरो हीरोइन.

0: Furniture Radio, you live on air. Who's this?
1: This is Bhaskar, and all I could see that this is from Drishyam.
0: You can say that this is from Drishyam. और ये इसमें हीरो हीरोइन पता है कौन है?
1: अजय देवगन, श्रेया सरन.
0: अरे वाह, आपको श्रेया सरन का भी पता है, अजय देवगन का भी पता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि गाना कौन गा रहे हैं?
1: नहीं, वो नहीं बता पाऊंगा.
0: चलिए, मैंने पूछा नहीं था, इसलिए आप क्वालिफाई हो गए हैं. भास्कर जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ ऑफलाइन. जस्ट अ सेक, ओके, स्टे हियर.
1: जी,
0: I know I'm getting a lot of calls, but I'd made the quiz a bit simple. Yes, इसमें जुबिन नौटियाल गा रहे हैं, मैं पूछ सकती थी ये. और इसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने दिए हैं, ये भी मैं पूछ सकती थी, लेकिन वो मैंने पूछा नहीं. तो चलिए, अभी भास्कर जी ने बिल्कुल जीत गए हैं वो ये पर्टिकुलर क्विज, एंड $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. सो दिस पहेली फॉर राइट नाउ. दिस क्विज इज ओवर. यू एंजॉय द सॉन्ग्स व्हाइल आई टेक हिज इन्फॉर्मेशन.

is your partner in building a stronger financial future. For more information, call 469-942-9888. That's 469-942-9888. Or you could also visit their website, which is agfintax.com. और विद दैट एक और गाना आप लोगों के लिए मैं यहीं प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि और कहाँ से करूँगी, यहीं से करूँगी ना, स्टूडियो से. और ये जो पर्टिकुलर गाना है, दिस इज़ रियली रियली कूल. ये लेटेस्ट फिल्म आई है इमरान हाशमी की, उससे लिया हुआ ये गाना विल लीड अस टू अ क्विक कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक के उस पार और गाने और मस्ती और साथ साथ जानकारी भी आपके लिए, जो कि आती है यहीं आपके लिए फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. एंड हियर इट इज, लेट्स हिट इट.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, URA Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: URA can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: URA Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit URA.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो।
12: बेटा, 95% आए?
13: हाँ मम्मी।
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
14: मेरा?
12: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
14: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
16: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
15: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
16: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
15: इंडिया तक।
16: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
10: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
17: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
18: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
19: Hi, this is Stephanie Hunt. You are listening to Fun Asia Radio.

एंड वेलकम लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. माय टाइम इक्विटी व्हिच इज लेड बाय सीपीए सुधीर पाय हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. Whether you are planning for long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. So do visit mytimeequity.com, and the number for CPA Sudhir Pai is 469-702-1272. With that, एक गाना बिल्कुल लाइंड अप है. दिस इज गोइंग आउट टू वन ऑफ अ वेरी वेरी स्पेशल लिसनर एंड हिज नेम इज सफ़ी. सफ़ी, आई नो आप शाहरुख खान को बहुत मिस कर रहे हैं, तो ये गाना स्पेशली सफ़ी के लिए जा रहा है. सफ़ी, आई होप यू आर इन्जॉइंग योर डे. इसके बाद बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कीजिएगा ये गाने सुन के, आपका खुद मन करेगा झूमने का. पहचान गए ना आप कौन सा गाना है. बिल्कुल, यू गॉट इट. कमिंग योर वे राइट राइट राइट हियर in just a second. And this song is indeed beautiful song.

आज बहुत ही पावन दिन है, लास्ट डे है श्रावण का, शिव जी पे होता है ये पूरा महीना, तो उन्हीं के ऊपर ये गाना केदारनाथ फिल्म से नमो नमो शिवाय, ऑल्सो रिमेम्बरिंग सुशांत सिंह राजपूत हु इज सच अ अमेजिंग एक्टर एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग, रिमेम्बरिंग हिम हु लेफ्ट अस टू सून एंड इज प्रॉब्ली विद शिवा राइट नाउ. विद दैट लिसनर्स और बातें होंगी आप लोगों के साथ. Let's enjoy this lovely track right here.

एंड लिसनर्स, विद दैट हम लोग पहुंच गए हैं नेक्स्ट गाने की ओर. और बहुत ही प्यारा गाना अभी जो आप लोगों ने सुना, बहुत ही प्यारा था ये गाना. सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान थी एंड अमित त्रिवेदी की आवाज़ में ये केदारनाथ फिल्म से लिया गया गाना. एंड कुछ जानकारी देते हुए बताऊं लिसनर्स दैट एन एक्सीडेंट कैन हैपन इन सेकेंड्स बट रिकवरिंग फ्रॉम इट कैन टेक मच लॉन्गर. इफ़ यू बीन इन्वॉल्व इन अ कार क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट or a slip and fall, let attorney Umar Khwaja handle the legal battle while you focus on healing. He'll fight for the compensation you are entitled to and you pay nothing unless your case is won. Call 469-300-5046 or you can also visit attorneyumar.com, that's O-M-A-R, for your free consultation. And this particular segment is brought to you by Umar Khwaja. विद दैट लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के साथ एक और गाना मैं शेयर करना चाहती हूँ. ये भी बहुत ही प्यारा सा लिरिकल सा गाना है. लेट्स एंजॉय इट.

0: ये गाना काफ़ी जैसे कहते हैं दर्द भरा गाना था, और जहाँ दर्द भरे गाने की बातें होती हैं, अभी जो लेटेस्ट नेपाल ट्रेजेडी हुई है वहाँ डेथ टोल हैज़ डेफिनेटली क्लाइम्ड. द टोटल नंबर ऑफ पीपल किल फॉलोइंग लास्ट वीक फ्लैश फ्लड्स ऑन नेपाल ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर नाउ स्टैंड्स एट 955 अकॉर्डिंग टू नेपाली एंड चाइनीज अथॉरिटीज. And some 4,471 people remain unaccounted for in both countries, officials have said. आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. It is, let's pray for Nepal, let's pray for people who are not to be found, let's pray for those who have tragically lost their lives in this tragedy. And tunnel searches chal rahi hain. Rescue crews and foreign specialists are racing to find scores of workers fear trapped inside hydropower tunnels in Nepal after thick mud buried the facility during last week's devastating flash floods. And more than 900 workers at various projects remain missing. Jo ye flood water hai, it's like liquid cement as death toll rises. Let's join a prayer for them.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
3: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
4: लैपटॉप में.
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव.
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम.
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल.
2: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज पावर्ड by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया.
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया.
10: मुझे भी नहीं आया.
6: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.sanadainc.com today.
12: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

0: एंड इंडीड लिसनर्स, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक पर्टिकुलर फिल्म जिसकी ट्रिलॉजी का क्वेश्चन भी था, दृश्यम, जी हाँ दृश्यम 3 आ रही है अजय देवगन की, और उसमें एक दो और लोग भी ऐड हो रहे हैं, वो भी काफ़ी दिग्गज लोग हैं। तो चलिए मैं आपको इसका ट्रेलर सुनाती हूँ। वैसे अक्टूबर 2 को रिलीज़ हो रही है, पर इट्स ऑलरेडी सच अ हाइप दैट इट्स वर्थ प्लेइंग इट।
1: कहते हैं ना, इंसान गलतियां करने के लिए ही बना है, और एक गलती मुझसे भी हो गई, इसीलिए अब ये केस एक बार और रिओपन होगा, और उस गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी।
2: विजय का केस वापस गरम हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में।
3: अरे हर साल यही सुनते आया हो, पुलिस यहाँ खोद रही है वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं।
1: लेकिन ये हमारी इस कहानी का अंतिम चैप्टर होगा, या तो हम हमेशा के लिए निर्दोष साबित होंगे या फिर दोषी।
4: सच पेड़ के बीच की तरह होता है।
5: दृश्यम 3 में ऐसा क्या है जो उसे मलयालम की पहली?
0: ऑलराइट, तो मैंने कहा ना इसकी ऑलरेडी इतनी हाइप हो चुकी है, क्योंकि जिन लोगों ने दृश्यम 1 एंड 2 देखी है उनको ऑलरेडी पता है कि कितनी ग्रिपिंग फिल्म थी है। तो इसी बात पे मैं आप लोगों के लिए गाना प्ले कर रही हूँ फ्रॉम द मूवी कार्बन कॉपी, इसका नाम है, श्रेया सरन के साथ हैं, द वेरी वेरी डेमिनेयर अजय देवगन, हु इज़ नोन फॉर हिज एक्शन, और इसमें तो काफ़ी जैसे कहते हैं ना तिकड़मी, मेंटली बहुत ही शार्प हैं। एंड चलिए सुनते हैं गाना।
5: ऐसे में अगर

0: Some people might have missed this particular film, Drishyam 1 and 2. But अगर आपको दृश्यम 3 देखनी है जो कि अक्टूबर में आ रही है, then don't do not miss watching 1 and 2, because वो बहुत ज़रूरी है कि 1 and 2 देखी जाए पहले और उसके बाद आपको थर्ड समझ आएगी. इट्स अ ट्रिलॉजी इफ यू विल, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. विद दैट मैं पहुंच रही हूँ नेक्स्ट गाने की ओर, और ये गाना बहुत ही कूल है. इसमें राघव हैं, लॉट ऑफ पीपल नो हिम एंड सम डोंट, बट लेट्स गो अहेड एंड प्ले द सॉन्ग. भाई तेरा स्टार है, राघव के साथ है निहारिका, आंखों से तूने 2.0 coming for you right here. As I'm getting ready to play that song, listeners, I'd also like to share some information with all you lovely people out there. And wo bhi bahut hi exciting news hai. It's called HOCCO HOCCO. So what is it? You know what? You found a truly iconic food brand when just hearing its name brings back a flood of memories. That's exactly what HOCCO has been for generations across India. And now it's here in North Texas. Whether you've been craving their legendary chana puri, iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous HOCCO cold cocoa that people absolutely swear by, you don't have to wait for your next trip to India anymore. Visit HOCCO at 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034, and experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. For the full menu and more information, visit hocco.us. That's HOCCO.us. Come hungry and leave with a taste of India.
1: हर गाने का रिमिक्स हो गया है सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता. नहीं आ रहेगा, कुछ बोलो यार,
2: गाने का इक्वल वैल्यू है.
1: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना.
3: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है तो एक और नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ.

भाई तेरा स्टार है राघव के साथ है निहारिका और गाना देख के तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है. इनफैक्ट ही मेड इट टू वन ऑफ द डांसिंग शोज एज अ स्पेशल गेस्ट एंड इट्स क्वाइट अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हुज has been a choreographer and has been a dancer and you know has started with television and has now made it to films and in fact it's very very promising and very very inspiring for a lot of people who are into dancing and they also want to come to the big silver screen and make a debut in films. So Raghav definitely has done that. So check it out, bhai tera star star hai. With that listeners, pahunch gaye hum log next gaane ki aur, lekin gaane ke saath saath main aapko ek aur इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ राइट हियर. डोंट गो एनीवेयर. मैं आपको बताना वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात. ये कि दिस रक्षाबंधन फनेजा रेडियो एंड चॉकटो कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट वांट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर. सेंड अस अ वन मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप और नंबर है 214-837-7147 एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग ड्यूरिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट resort stays and the grand prize is an unforgettable sibling reunion weekend at Chocolate Casino in Resort Durant. For complete contest details, check out Phanasia's radio's social media pages. Chocolate Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. You must be 21 years or older to participate. Terms and conditions apply and please play responsibility. That's a great, great way to thank the community. Fun Asia Radio is always thinking about that, bringing the community together. This is your host, Paul Bhatia. With that, main pahunch gayi hoon next gaane ki aur. Aur ye gaana will totally set your mood on fire.

मोनिका, ओ माय डार्लिंग, धुरंधर से लिया गया ये बहुत ही सिज़लिंग वर्जन मोनिका ओ माय डार्लिंग। ऑफ कोर्स जो उसका ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है, पर आई वुड हैव टू से कि बहुत ही मज़ेदार म्यूजिक था धुरंधर का, एंड इट टोटली केप पीपल absolutely glued to their seats. The soundtrack also had a lot to do with it. इसके साथ साथ एक और ऐसा गाना जिससे लोगों को बहुत ही जिसे देख के मज़ा आया, जिसे बहुत sensationalism थी इस गाने में, I should say बहुत sizzling factor था इस गाने में rather than sensationalism. Street 2 से लिया गया ये गाना, इसमें है तमन्ना भाटिया, राजकुमार राव, एंड बहुत ही कूल से गाने में आपके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ आज की रात।

ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी भी थे इस फिल्म में, आग तू मैं पानी, जब वो बोलते हैं उसी में बहुत ही से कहते ना, दैट इज वर्थ वॉचिंग, व्हाट एन एक्टर, ही जस्ट नोज हाउ टू कैप्चर हिज ऑडियंस. ऐसे कुछ एक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ही एक बात होती है, और पंकज त्रिपाठी डेफिनेटली फॉल्स इन दैट कैटेगोरी. विदाउट लिसनर्स, एक और गाना बहुत ही कूल है, ऊंचा लंबा कद, और ये वेलकम टू द जंगल से लिया गया. ये वाला गाना मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ नेक्स्ट, एंड इसके साथ साथ ये भी है कि बस अभी आज मैं आपके साथ 12 बजे तक हूँ और मस्ती तो चलती रहेगी और बातें भी होंगी. नेक्स्ट शो इज कमिंग अप राइट एट 12, बट आई विल बी प्लेइंग दैट सॉन्ग बिफोर आई से बाय टू यू, एंड आई विल से बाय राइट बिफोर द सॉन्ग, राइट आफ्टर द सॉन्ग इज ओवर.

All right, listeners, I hope all the songs that I played for you got you in a great mood. थोड़ी variety भी डाली और कुछ मस्ती भी थी listeners, क्योंकि music में वो बात होती है कि अगर थोड़ा तनहा feel हो रहा हो या थोड़ा down feel हो रहा हो तो आपको एक चीज़ करनी है, बढ़िया सा गाने सुनने हैं, and with that mood भी बढ़िया हो जाता है और life भी बढ़िया लगने लगती है. And इसी के साथ साथ एक और गाना के साथ मैं आपके लिए आपसे विदा ले रही हूँ. दिस इज़ योर होस्ट प्रौढ़ भाटिया. I definitely want you to be safe, be brave, and keep it real, genuine, and happening with Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host, Prabhatia, signing off for now.

0: My real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye million dollar property bhi.
1: Hi, this is Hussain Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
2: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, division of Brazos National Bank.
3: Yaar, modern Manga Sutra ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
4: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
3: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
4: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
5: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
4: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
10: डील कहाँ?
4: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
7: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
13: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

Hello, namaste and good afternoon, Dallas. This is your host Ayushi. जी हाँ, आयुषी पहुंच गई है स्टूडियो में आपको एंटरटेन करने, कुछ खूबसूरत, कुछ मजेदार और कुछ अच्छे अच्छे बॉलीवुड गानों के साथ. तो चलिए आज के इस शो का सफर शुरू करते हैं.

यार, ये डैलस की गर्मी पीछा ही नहीं छोड़ रही है. ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वी आर एंटरिंग इनटू सितंबर. आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, ये साल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है शायद पिछले कई सालों में नहीं पड़ी है. लेकिन क्या करें, अब बाहर का मौसम तो हम बदल नहीं सकते हैं, अंदर का मौसम जरूर बदल सकते हैं अच्छे गानों के साथ और चटपटी बातों के साथ. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर. तो भाई, सबसे पहले मिर्जापुर द मूवी. जी हाँ, ये मूवी आने वाली है. एंड इसके पहले इसका म्यूजिक जो है वो साउंड ट्रैक लॉन्च हो रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में हो रहा है. यस, यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया ने पहली बार ये किया है, हियर इट फर्स्ट मॉडल. और इसमें क्या है भाई, आप अगर आप सबसे पहले इस म्यूजिक को सुनना चाहते हैं तो आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. सही बात है भाई, अब मतलब फ्री म्यूजिक इतना यूट्यूब पे चल गया है कि लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं मिर्जापुर का म्यूजिक सुनने के लिए. कितने लोग खरीदेंगे ये सब्सक्रिप्शन बताओ मुझे कॉल करके, या इंतजार करोगे YouTube पे गानों के रिलीज होने का.

Another news coming in from Bollywood. Yash Toxic ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. मैंने कई सारे रिव्यूज देखे ऑनलाइन जहां पर लोग बोल रहे हैं इट्स टू मच टॉक्सिक एंड उसके बाद भी मूवी कर रही है. अच्छा, तो हम लोग एक्चुअली हो गए हैं टॉक्सिसिटी के शिकार और हमें बड़ा मजा आ रहा है टॉक्सिक फिल्में देखने में. मैंने अभी तक नहीं देखी है, सोचा भी नहीं था उन रिव्यूज के बाद देखूंगी, पर अब तो यार एक बार देखना पड़ेगा. मतलब क्यों ये इस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. बट एक टाइम ऐसा था जब हम इतने बड़े बॉलीवुड फैन थे. इनफैक्ट अभी भी हैं टू एन एक्सटेंट, बट अब समय की थोड़ी कमी हो जाती है इसलिए अपने आप को रोक लेते हैं. कोई भी ऐसी फिल्म जो आई हो, पहले तो हम वो देखते थे. एक समय था जब हॉल में जाके देखते थे, फिर घर पे देखने लगे, पर वो मूवी रिलीज हुई है हमको पता है और हमको देखना है. और द बेस्ट पार्ट और द वर्स्ट पार्ट वॉज इट, वो मूवी चाहे कितनी भी बुरी हो, चाहे कितनी भी टॉक्सिक हो, चाहे कितनी भी नींद दिलाने वाली मूवी हो, हम वो मूवी का क्लाइमैक्स देखे बनाना, मेरा मतलब वो मेरे दिमाग में चल रहा है हुआ क्या फाइनली, हमको पता है कि क्या होने वाला है. स्टिल आई यूज टू वॉच द एंड एंड इतना बड़ा कीड़ा था मेरे अंदर. तो कोई है मेरी तरह ऐसे ऐसा इंसान जो हर मूवी को खत्म करके ही छोड़ता है? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरा भाई है, माय हस्बैंड इज देयर, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बीच में मूवी बंद करके उठ जाएंगे. ऐसा कैसे कर सकते हो यार? यू हैव टू नो कि इसका अंत आखिर हुआ क्या.

ओके, सो आई जस्ट गॉट अ फीडबैक. टॉक्सिक मत देखना, कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक है. दैट्स व्हाट वन ऑफ माय कॉलर्स जस्ट सेड. अभी उनका फोन आया था, बोला मैडम ना करना अपने 3 घंटे बर्बाद इस मूवी के पीछे, पर अगर अब आप लोग करना चाहते हैं तो करिए. मैंने तो इनकी बात मान ली है और आई विल नॉट डू दैट. और आप सुन रहे हैं फन एशिया 104.9 FM, अपनी होस्ट आयुषी के साथ. और आयुषी आपको एक बात और बताना चाहती है कि अगर आप मुझे ना रेडियो के अलावा आपको मेरी बातें, मेरी आवाज़ अगर पसंद है और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए. मेरा हैंडल है बिहारी मॉम इन अमेरिका और फेसबुक पर भी है, इट्स आयुषी भूषण. तो ऐसी ही कुछ बॉलीवुड की खबरें और बॉलीवुड के गाने हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. फिलहाल मैं वो गाना प्ले कर रही हूँ जो मेरे घर पे ना इस वीकेंड लूप पे बजा है, क्योंकि ये गाना मेरी बेटी को पसंद आ गया है. दिस इज़ द वेरी फेवरेट एंड वेरी लाइक द ओल्ड चुनरी चुनरी सॉन्ग, बट शी डजन लाइक दैट, शी लाइक्स वरुण धवन.

ये गाना था मेरी बेटी का फेवरेट गाना. हम सोचे कि 2 दिन से सुन ही रहे हैं तो एक दिन और सुन लेते हैं. बट मैडम का भले ही ये फेवरेट हो, मेरा तो वही पुराना है जिसमें मुझे सुष्मिता सेन और सलमान खान दिखते हैं. उस गाने की बात ही कुछ और है और हम उसी पे थिरक पाते हैं. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. आपको बता दूं कि मैं फरमाइशें भी ले रही हूँ, कुछ बॉलीवुड की न्यूज़ आप तक लेकर के आई थी, और ऐसी ही कुछ चर्चा हम करते रहेंगे अपने अगले सेगमेंट में. बहुत सारी बातें हैं और आप स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. तो उठाइए फ़ोन और दीजिए अपनी फरमाइशें. किसी का अगर जन्मदिन है, किसी का अगर शादी की सालगिरह है, या फिर आप ऐसे ही याद कर रहे हैं उनको, थोड़ा प्यार आ रहा है गर्लफ्रेंड पे या बीवी पे, तो कॉल करके गाना डेडिकेट कर दो. यार ये पुराने तरीके कभी कभी ना काफ़ी अच्छे होते हैं. इतना भी जो भी इतना भी स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं यार, कर लो एक डेडिकेशन. बगल में ही बीवी क्यों ना बैठी हो, उनके लिए गाना डेडिकेट कर दो. उठाओ फोन और कॉल कर लो मुझे. चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के जा रहे हैं और गाने के साथ ब्रेक भी आ जाएगा. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ढेरों बातें करेंगे. फनेशिया 104.9 FM, आपकी होस्ट आयुषी के साथ.

0: सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का. वैसे मेरे पास फरमाइशों की लिस्ट आ गई है एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग यार. आप लोगों का कॉल आता है बहुत अच्छा लगता है बिकॉज येस हमें शो करने का मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉल से मिलता है, मैं हमेशा कहती हूँ. और बीते दिनों राखी गई है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आप लोगों की राखी अच्छी बीती हो. और मेरी भी अच्छी बीती है यार. मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, लॉगिंग करते रहती हूँ तो मुझे उसमें बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए. स्पेशली आपने जो NRIs है ना उनके लिए राखी बड़ा ही स्पेशल प्लेस होल्ड करता है. तो क्योंकि मैं राखी के दिन शो नहीं कर रही थी, मैं अभी आप लोगों को राखी की शुभकामनाएं देती हूँ. भले देर है पर क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब घर से दूर हैं तो एक दूसरे को विश कर देते हैं. वैसे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे जो परिवार है उसके साथ राखी सेलिब्रेट की हमने. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ बिलेटेड रक्षाबंधन एंड होपिंग कि आने अब फेस्टिविटी शुरू होने वाली है, जन्माष्टमी है एंड देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स कमिंग. वो सब कुछ अच्छा बीते आप सबके लिए. फिलहाल हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और फिर ढेरों बातों पे चर्चा करेंगे. आप सुनते रहिए फनेशिया 104.9 FM अपनी होस्ट आयुषी के साथ. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com.
2: We need to talk.
5: अब क्या हुआ?
2: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
2: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
2: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
8: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
7: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
9: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
10: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
9: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 pm to 3 pm. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: is Ali Zafar, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे. और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको उन गानों की तरफ लेकर के चलूंगी जिसकी फरमाइश आपने की है. तो पहला गाना मेरा फेवरेट है और ये है, एक मूवी का गाना नहीं है, दिस इज फ्रॉम द सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसका जो सेकेंड पार्ट है मैंने सुना है कि जल्दी ही रिलीज हो रहा है. मैं वेट कर रही हूँ बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले इस पर एक शो किया था और एक चर्चा की थी. मुझे नहीं लगता है कि इसमें सुधा या प्रीति में से सुधा को चुना जाएगा. देखते हैं क्या होता है. इसलिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ इसके सेकेंड सीजन का.

Involved in a car or truck accident or a slip or fall incident, attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful, हम सब ये जानते हैं, इसलिए आपको एक ऐसा attorney चाहिए who make sure that you are compensated and you don't pay until you win the case. तो अगर आपको free consultation चाहिए तो आप please call करिए 469-300-5046. I repeat, it's 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. And we are currently taking in requests from you. So please call us on the studio number 972-235-5555 और हम आपके पसंद के गाने प्ले करेंगे. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, द लास्ट सॉन्ग दैट आई प्लेड वॉज रिक्वेस्टेड बाई केत की. एंड ये गाना रेखा भारद्वाज और राघव की आवाज़ में है. इट्स बिकम वन ऑफ माई फेवरेट. इस सीरीज़ के बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं जो बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को, और साथ ही मुझे भी बहुत पसंद है. तो कॉल करिए अगर आप कोई फरमाइश देना चाहते हैं. फिलहाल अगला सॉन्ग मोहम्मद की फरमाइश पे है.

ओके, सो लंच टाइम हो रहा है, तो आपको जल्दी से बता दें कि अगर आप हब 21 121 के पास हैं, देन यू शुड विजिट दिस प्लेस. इट्स कॉल्ड Page 3 Eatery. फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स टू फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, इफ यू स्टिल हैवंट एक्सपीरियंस Page 3 Eatery एट हब 121, यू आर सीरियसली मिसिंग आउट. यहाँ पर आपको बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड और मॉडर्न फ्लेयर का फ्यूजन मिलता है. Whether it's brunch, lunch, dinner, date night, या फिर एक foodie meetup ही क्यों ना हो, Page 3 brings the perfect mix of flavors, energy and vibrant vibes. Page 3 Eatery at Hub 121, और आप इनका वेबसाइट जरूर एक्सप्लोर करिए, Page 3 Eatery.com. Taking you towards the next song. This song is dedicated from Rosina. ये जैनुल के लिए है. जैनुल का आज बर्थडे है, सो वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. सो एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.

0: आवाज अच्छी है, बस थोड़ा नमक कम है। और राग में नमक आने के लिए नमकीन जिंदगी जीनी पड़ती है।
1: और नमक ज्यादा हो जाए तो कड़वी हो जाती है जिंदगी। मैं आपसे संगीत सीखने आई।
0: हमारे यहाँ संगीत को गाना कहते हैं।
1: गाना सिखाने की जो कीमत हो मंजूर है।
0: हमारे
2: So it was this beautiful song that was requested by Rosina for Janul, and Janul का birthday था, तो wishing him a very happy birthday. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। गानों की फरमाइशें लगी हुई हैं हमारे पास, लेकिन उसके पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दें। No health insurance or is Passion Health out of your network? Stay connected to affordable primary care with Passion Health Direct for just $85 a month. Your membership includes primary care visits, follow-ups and preventive care, chronic disease and medication management. Telehealth when appropriate, care coordination plus 20% saving on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. Call or text 214-666-6259 or visit PassionHealthPhysicians.com. Passion Health, our passion, your health, our community. This program is not a health insurance. Eligibility restrictions do apply.

0: आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय कॉलर्स, उन्होंने कहा कि यार आपने तो मेरे मन में जो गाना चल रहा था वो प्ले कर दिया, थैंक यू सो मच. तो मैं बोला कई बार ऐसा होता है यार, बिन मांगे ना बहुत कुछ मिल जाता है, और इसी को तो कहते हैं यू नो टेलीपैथी कनेक्शन. और मैंने वो गाना प्ले कर दिया, इनफैक्ट मुझे इसकी फरमाइश नहीं आई थी, बट मुझे सुनने का मन था एंड श्वेता लव्ड इट. थैंक यू श्वेता फॉर कॉलिंग. और श्वेता ने ये भी बताया ना कि वो भी मेरी ही तरह कोई भी फिल्म हो, बस बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई और जा करके संडे को सुबह सस्ता वाला शो देखना है. उस समय ज़्यादा पैसे नहीं होते थे हमारे पास, तो हम लोग मॉर्निंग शोज जाया करते थे. ऐसी कुछ खटपट खट्टी मीठी बातें हैं, तो कॉल करिए. वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, हम आते हैं अभी ब्रेक के बाद.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online third through sixth grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, रिटेन टॉप टैलेंट एंड प्लान फॉर फ्यूचर सक्सेशन ऑल एट द सेम टाइम? एन एग्जीक्यूटिव रिटेंशन स्ट्रेटजी यूजिंग लाइफ इंश्योरेंस मे हेल्प एड्रेस मल्टीपल बिजनेस गोल्स, इंक्लूडिंग की पर्सन प्रोटेक्शन, एम्प्लॉई रिटेंशन incentives and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your craving, Dallas, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican inspired menu, and trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Beta, 95% aaye?
6: Ha mummy.
5: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
7: मेरा?
5: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
7: वो
8: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
11: वेलकम बैक। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे, और हम बातें कर रहे थे बॉलीवुड फिल्म की, उस टाइम की जब हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करते थे, और आपके ढेरों कॉल्स आ रहे हैं जहां पर हमारे थॉट्स सिमिलर हैं। हम लोग बस फर्स्ट डे फर्स्ट का शो का इंतजार किया करते थे, क्योंकि उस समय हम फ्राइडेज नहीं जा सकते थे, तो सैटरडे संडे पहला शो जाते थे। पहला शो इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि एक्साइटमेंट होती थी, टिकट सस्ती होती थी, 50 रुपये में मिल जाती थी, छोटे शहरों में तो 30 रुपये में मिल जाती थी, इसलिए लोग चले जाते थे। फिलहाल यहाँ मेरे शो पे चल रहा है फरमाइशों का सिलसिला, और अगला गाना है चीनू की फरमाइश पे, इज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी स्पेशल सेलिब्रेशन, इससे पहले कि आप स्ट्रेस करना शुरू करिए कि वेन्यू क्या रखें, डेकोर क्या रखें, केटरिंग कहाँ से हो, ये सारी छोटी छोटी बारीकियों को देखने के लिए, समझने के लिए आपके पास है वेनेसा इवेंट्स. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग, एक्सक्लूसिवली बाय द रेनोन्ड पसेरा ग्रैंड. सो यू कैन फोकस ऑन मेकिंग मेमोरीज वाइल दे टेक केयर ऑफ द रेस्ट. कॉल हरी बसेरा टुडे एट 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. तो आज हम ये जो फरमाइशों का सिलसिला चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, और एक और गाना है जो हमने आपके लिए लाइन अप करके रखा हुआ है. एक्चुअली इस गाने की फरमाइश आई है, जी हाँ, और ये फरमाइश है अश्विन जी की तरफ से अपनी वाइफ दिव्या को, क्योंकि उनका बर्थडे था. तो बड़ा ही प्यारा सा उन्होंने गाना सुना है, पुराना गाना है पर आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक कर देगा ये वाला गाना, तो सुनिए इसको.

So here was this song dedicated from Ashwin ji to Divya ji on her birthday. Wishing you a very happy birthday, Divya. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, डायमंड आर जस्ट फॉर एवर. दे आर इवन मोर इररेजिस्टेबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को. So taking you towards our next song, a very beautiful number. इसकी भी फरमाइश हमारे कॉलर की तरफ से आई है, and इस गाने की फरमाइश पल्लवी ने की है.

तो बस ऐसे ही अच्छे गानों का सिलसिला, खूबसूरत गानों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपको एक और ज़रूरी बात बता दें, सोनू निगम रेवोल्यूशन के बारे में। जी हाँ, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट इज हैपनिंग हियर इन डैलस। एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन सैटरडे सेप्टेम्बर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। आपके फेवरेट गाने और एक आइकॉनिक आवाज़, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. I repeat, it's 855-360-SHOWS. Revolution. Sonu Nigam Live. Exclusive media partner is Funasia Network.

0: मैं संभालू।
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
3: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
3: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
3: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
5: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
6: ये क्या होता
7: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल। आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
9: भूख लगी
10: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट, rich Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to, all under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai, it's what your mood is actually craving.
5: A quick bite, a perfect lunch ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere, you go to Page 3, Hub 121 McKinney.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ, विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
17: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: taking you on air.
1: प्यार वाली बातें करेंगे हम.
0: Sorry for the confusion. Welcome to the URA Debt Relief segment. Today we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief Program. Hi, Mr. Aman. Thanks for joining us on 104.9 FM Phanisha Radio. कैसे हैं आप? How are you doing?
2: All good, Phanisha. सुनने वाले सभी listeners को URA और Aman की तरफ से नमस्कार. महीने का आखिरी अंतिम दिन, लेकिन इस अंतिम दिन से शुरुआत होती है अगले महीने की. और उस गलती की जो हम पिछले महीने या पिछले कुछ महीनों से करते आ रहे हैं, वो ये कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट आप भरते जा रहे हैं. क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से नहीं उतरता, रादर आपका क्रेडिट कार्ड का नुकसान ये होता है कि हाई इंटरेस्ट पे करते हैं और उसके साथ अपना क्रेडिट स्कोर भी आप खराब कर रहे हैं. तो अगर आप परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देने से भी क्रेडिट कार्ड हिल नहीं रहे हैं, उतर नहीं रहे हैं, तो जस्ट सिंपली कॉल कीजिए URA को. बैंकरप्सी से बेटर आइडिया है डेट सेटलमेंट करना, जिससे आपका क्रेडिट भी बूस्ट होता है, दोबारा क्रेडिट कार्ड भी मिल जाते हैं और आपका कर्जा भी आधे से ज्यादा माफ हो जाता है. जी हाँ, आधे से ज्यादा कर्जा अगर माफ करवाना है, क्रेडिट कार्ड कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल, बिजनेस या स्टोर के, उन सारे क्रेडिट कार्ड की एक पेमेंट बन जाएगी, आधा क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाएगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स हो या फिर गाड़ी का, जो गाड़ी रिपोजेस हो गई है या टोटल हो गई है, इंश्योरेंस ने पूरा या आधा क्लेम ही दिया है, तो उस लोन को भी आप नेगोशिएट करके माफ करवा सकते हैं. सिंपली नोट डाउन आवर नंबर 1-888-888-9914 1-888-888-9914. या फिर अगर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल मी 9167763555 9167763555. अगेन 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. नंबर ना भी लिख पाए हो तो भी आप फनीशिया रेडियो कॉल कर सकते हैं और URA का नंबर ले सकते हैं 9167763555. थैंक यू
0: सो मच अमन. So this was Mr. Aman from URA Debt Relief, and I'll repeat the numbers again. So you can call them on 1-888-888-9914 or you can call Aman directly on 916-776-3555. Inka website hai ura.org. To chaliye शो को आगे बढ़ाते हैं. और आज बॉलीवुड की एक ऐसी सेलिब्रिटी, एक ऐसी स्टार, सुपरस्टार का बर्थडे है, जिन्होंने ये सारे यू नो सेलिब्रिटी स्टार सुपरस्टार के जितने ये लेबल्स हैं उसको पाने के लिए बहुत मेहनत की है. ये वो एक्टर हैं जिनकी जर्नी बिल्कुल भी कन्वेंशनल बॉलीवुड हीरो की तरह नहीं थी, कि जो कि मतलब फेमस सरनेम के साथ और सिक्स पैक्स आपके साथ और एक ग्लैमरस लॉन्च के साथ आया होगा. ये बंदा बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा है और हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव की. टुडे इज हिज बर्थडे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. पहले इनके फिल्म का एक गाना सुनाते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे इनके बारे में.
3: उठने वो भार चलावत की लावत

तो कुछ लोगों को शोहरत मिलती है रातों रात, ऐसे भी लोग होते हैं कुछ खुशनसीब जो एक ही बार उनको बड़ा ब्रेक मिला और शोहरत उनके कदम चूने लगती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक पर एक करके अपने करियर की शुरुआत करते हैं, वन परफॉर्मेंस एट अ टाइम जिसको कहते हैं, और राजकुमार राव उन्हीं में से हैं, और वो उन एक्टर्स में से हैं जो हम लोगों की तरह शाहरुख के फैन थे. एंड ही हैज़ ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस, कि राजकुमार राव ने हमेशा ये कहा है कि वो डीपली शाहरुख खान से इंस्पायर थे और उन्होंने शाहरुख खान की फिल्में देखी हैं और वही देख के बड़े हुए हैं ठीक हम सब की तरह. एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द फैक्ट दैट शाहरुख केम फ्रॉम आउटसाइड द ट्रेडिशनल बॉलीवुड फैमिली सिस्टम एंड ही स्टिल बिकेम अ सुपर स्टार. तो उनको इंस्पिरेशन रख करके राजकुमार साहब भी मुंबई आ गए और मुंबई आकर के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उन्होंने एक्टिंग को प्रोफेशनली परस्यू किया है, छोटे बड़े किरदार किए और सीधे हीरो नहीं बने, सीधे सेलिब्रिटी स्टार नहीं बने. कई फिल्मों में जैसे लव सेक्स और धोखा, रागनी एमएमएस और गैंग्स ऑफ वसेपुर में छोटे छोटे किरदार किए उन्होंने. एंड देन लोगों को लगा कि यार ये बंदा एक्टिंग कर सकता है, तब जाके साल 2012 में इनको इनका पहला ब्रेक थ्रू मिला और वो फिल्म थी शाहिद, इसमें ये पहली बार दिखे थे. तो आज हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनका बर्थडे है. एंड लेट्स डू सम लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट मिस्टर राजकुमार राव, जिन्होंने आज के टाइम पे काफ़ी शोहरत काफ़ी नाम बॉलीवुड में हासिल कर लिया है. और उनके ही फिल्म के कुछ गाने आप तक लेके आ रही हूँ मैं उनके जन्मदिन पर.

सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, शादी में जरूर आना है फिल्म का नाम, और राजकुमार राव और कीर्ति खरबंदा हैं। तो अपने इस सेगमेंट में हम सिर्फ राजकुमार राव के गाने चलाएंगे बिकॉज आज उनका जन्मदिन है और इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। उनके फिल्मों की बात करें तो मैं बता रही थी कि उनकी पहली फिल्म थी 2012 में आई फिल्म शाहिद, जिसमें उन्होंने एक लॉयर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का रोल किया था। एंड हिज वेरी फर्स्ट फिल्म जिसमें उन्हें लीड रोल मिला था got him a national film award for best actor. बस वहीं से इनका रास्ता खुलता गया एंड इन्होंने 2017 में न्यूटन की जो एक जहाँ पर एक इन्होंने आइडियलिस्टिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रोल किया था एंड वहाँ पर ये फिल्म जो थी ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी अकेडमी अवार्ड्स के लिए उस साल 2017 में। बस यहीं से शुरू हो गया उनके बॉलीवुड फिल्म का सफ़र। ये दो फिल्में जो उन्होंने की और जिस तरह का काम उसमें किया लोगों ने देखा, इन फिल्मों में कोई बॉलीवुड वाला टिपिकल हीरो कैरेक्टर नहीं था, कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स नहीं थे, एक ऑर्डिनरी आदमी जो अपना काम कर रहा है ऐसे ही किरदार पहले उन्होंने निभाए एंड दैट बिकेम वन ऑफ द ट्रेड मार्क्स ऑफ हिज एक्टिंग। एंड देन केम द कमर्शियल सिनेमा जहां पर उन्होंने किया 2018 में पहली फिल्म, कमर्शियल फिल्म थी स्त्री, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे दो प्यारे लिसनर्स जो रोज इस समय पर मुझे फोन करते हैं, मरियम एंड सोहेल आर हियर, आई मीन दे आर इन देयर कार्स एंड दे हैव रिक्वेस्टेड दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम राजकुमार राव मूवी। सो लिसन टू दिस सॉन्ग एंड इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट एनी सॉन्ग प्लीज टू कॉल मी।

0: अनदर सॉन्ग फ्रॉम राजकुमार राव इस मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो. और ये भी फिल्म की है उन्होंने, बट 2018 में स्त्री आई थी. और ये जो ये ऐसी फिल्म थी ना जहाँ पर मेन स्ट्रीम ऑडियंस, जिसको हम कमर्शियल सिनेमा कहते हैं, वहाँ पर लोगों को राजकुमार राव पसंद आने लगे थे. 2018 में आए एंड राजकुमार राव को टेक ऑल द इंटेंसिटी ऑफ हिज अर्लियर परफॉर्मेंसेज एंड टर्न इट इनटू हिज कॉमिक टाइमिंग. मतलब विकी का जो कैरेक्टर है वो सबका फेवरेट हो गया था. और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फिल्म एक हॉरर कॉमेडी थी, बट विकी वॉज नॉट रिटन एज ए टिपिकल माचो बॉलीवुड हीरो. मतलब वो नहीं कि जाके भूत से लड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. ही वॉज अ ऑकवर्ड, फनी, रोमांटिक एंड स्केर्ड ऑफ अ वुमन हु मे और मे नॉट बी अ घोस्ट. सो ये स्त्री जब आई तो स्त्री ने इनको कर दिया बहुत ही फेमस, और हर घर में पहचाने जाने लगा भाई राजकुमार राव को. और इनकी जो पहले की फिल्में थीं उसको भी लोग जा जा के वापस देखने लगे, जिन्होंने पहले शाहिद या न्यूटन नहीं देखी थी. तो चलिए आपको एक और मज़ेदार सा गाना सुनाते हैं राजकुमार राव की फिल्म का, और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे बताइए. आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको देंगे गिव अवे आज का. पहले तो इस गाने को इंजॉय करिए. फ्रॉम दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी स्त्री.
1: म्यूजिक

0: मीका सिंह की आवाज में स्त्री फिल्म का ये गाना राजकुमार राव की फिल्म है और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ नोन अननोन फैक्ट्स आप तक लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो बस उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार राव ने अपनी पहली फिल्म को लिटरली चेज किया था, तो उन्होंने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में दिबाकर बैनर्जी का एक ही वाज सेइंग दैट ही वाज लुकिंग फॉर न्यू कमर्स फॉर हिज मूवी लव सेक्स और धोखा, और उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल किया और उन्होंने फ़ोन करते रहे, जा जा के वहाँ पर बैठते रहे जहाँ पर उनको पता था कि ऑफिस है, स्टूडियो है, एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ उनके जो ऑडिशंस हुए राइट, एंड उसके बाद से ही हैड टू डू अ वर्कशॉप उस रोल में जाने के पहले, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस फिल्म के लिए, उनको बहुत वेट लूज करना था, एंड देयर इज अ क्लिप विच इज ऑलवेज शोड वी सी ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे वो बहुत पतले दुबले एकदम अजीब से लग रहे हैं, दैट वॉज फॉर लव सेक्स और धोखा जब उन्होंने बहुत वेट लूज किया था बिकॉज उनको वो पहली फिल्म चाहिए थी किसी भी हालत में, एंड ही डिड दैट, ही गॉट द मूवी, ही डिड हिज एक्टिंग, मे बी अ स्मॉलर रोल बट येस ही शोड हिमसेल्फ एंड हिज फर्स्ट पे चेक वॉज ओनली 11,000 इंडियन रुपीज, 11,000 रुपये, मतलब बहुत सारे एक्टर्स ने ऐसा कहा है जो स्क्रैच से शुरू करते हैं कि उनको बड़ा अमाउंट, बड़ा साइनिंग अमाउंट मिलने में बहुत समय लग गया, बहुत मेहनत करी उन्होंने उसके लिए, छोटे छोटे रोल्स और छोटे छोटे पेचेक्स के साथ किसी तरह से स्टार्ट की अपनी जर्नी, एंड राजकुमार राव इज वन ऑफ दोज एक्टर्स एंड वी आर लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स, उनकी मूवी की बातें कर रहे हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी स्टोरी दैट यू नो ऑफ यू कैन डेफिनेटली कॉल मी ऑन द स्टूडियो नंबर 9722355555 स्टूडियो का नंबर, और अगर आप इनका कोई गाना सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, साथ में मिलकर इनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं भाई। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे कमर्शियल ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं और अगला गाना मैंने लाइन अप करके रखा है, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338, दैट्स 817-786-3338।
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय

0: मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम, चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
9: Fun Asia 104.9 FM, non-stop entertainment. और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, और आज हमें पता ही नहीं लगा कि दो घंटे कहाँ बीत गए। बहुत सारी विषयों पर हमने चर्चा करी। अभी फिलहाल हम राजकुमार राव के गाने सुन रहे हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं उनकी फिल्म से, तो डू कॉल मी ऑन द स्टूडियो नंबर विच इज़ 972-235-5555। तो शो को आगे बढ़ाते हैं और अपना अगला सेगमेंट जिसमें हम आपको गिव अवेज देते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो अभी फिलहाल आपके पास मौका है एक डोसा, एनी डोसा ऑफ योर चॉइस जीतने का, या फिर एक फिल्टर कॉफ़ी सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से। सो इट्स 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स, और साथ में शहर की सबसे बेस्ट फिल्टर कॉफ़ी भी यहाँ मिलती है। तो इनके पास फैमिली डिनर से लेके केटरिंग सर्विसेज सब कुछ है, जैन फ्रेंडली ऑप्शन भी है। सो प्लीज डू विजिट दिस प्लेस, सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट हाईवे 121 इन कस्टर जंक्शन। राइट नाउ वील डू द गिव अवे। सो आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंस वी नो दैट वी आर प्लेइंग सॉन्ग्स फ्रॉम राजकुमार राव मूवी, बस आपको मूवी का नाम बताना। आपके पास ऑलरेडी हिंट है कि एक्टर कौन है, तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन बस अब देखते हैं कौन पहले कॉल करता है मुझे और लेके जाता है ये गिव अवे। तो आ रहा है अगला गाना।

इतना प्यारा और रोमांटिक गाना। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही, और मुझे अपने आज के दो विनर मिल गए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नाम है श्रद्धा एंड दीपक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत सारे कॉल आए पर पहले दो कॉलर्स ले गए ये इनाम, और आप जा सकते हैं सैन इडली रेस्टोरेंट और वहां से अपना गिव अवे कलेक्ट कर सकते हैं। ये है हाईवे 121 और कस्टर के जंक्शन पे। तो भाई राजकुमार राव के बहुत सारे गाने सुनाए मैंने आपको, और भी सुनाऊंगी, बिकॉज भाई ये वो एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्क्रैच से की और आज बन गए हैं हीरो जिसको हम सब जानते हैं। लेकिन ये हीरो भी किसी और हीरो का दीवाना था, और उसका नाम था शाहरुख खान, जिसके हम सब दीवाने हैं। और कि वो उन्होंने उन्हें मतलब बचपन से ही वो फैन है, उन्होंने कहा कि वो SRK की तरह एक्टर बनना चाहते हैं। और जब उन्होंने कुछ मूवीज कर ली, सो ही केम टू नो दैट शाहरुख खान इज अराउंड महबूब स्टूडियो, और वहाँ पे वो शूट कर रहे हैं और उनको उनसे मिलना था। तो उन्होंने किसी तरह मैसेज भिजवाया कि शायद उनको शाहरुख खान से मिलने का मौका मिल जाए, और वो मैसेज शाहरुख तक पहुंचा। एंड देन शाहरुख ने उनको मिलने के लिए बुला लिया, और ही वॉज वेरी एक्साइटेड। और जब वो उनसे मिलने गए तो उनको पता लगा कि शाहरुख खान को राजकुमार राव का पूरा कच्चा चिट्ठा पता है। ही नोज हिज बायो, शाहरुख बीइंग शाहरुख, उनको सब कुछ पता रहता है। एंड ही लाइक वॉट एवर इंटरव्यूज आई हैव सीन अबाउट शाहरुख, ही इज सच अ लविंग पर्सन, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे इंसान है यार। अब बंदे ने तरक्की हासिल करी है, सब कुछ करा है, पर अपने आसपास के लोगों को बहुत प्यार देते हैं। और उन्होंने जो राजकुमार राव का ये फैन मोमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज आप जिसको जिसको आप देख करके बड़े हुए हैं, द पर्सन हु यू लुक अप टू, व्हेन दे नो योर नेम, देन यू नो ये एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। एंड मे बी दैट वॉज द केस विथ राजकुमार राव। तो भाई शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं, और ये गाना भी उनकी ही फिल्म से है, मतलब राजकुमार राव की फिल्म से है।

0: सो हियर वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. और आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं. और अब बात करते हैं राजकुमार राव और उनकी पत्नी धर्म पत्नी प्रतिलेखा जी के बारे में. जिन दोनों का एक दूसरे के देखने के बाद जो रिएक्शन था ना, वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा था. मतलब बिल्कुल ही इंटायरली ऑपोजिट जो बोलते हैं ना. सो प्रतिलेखा फाउंड हिम वेरी क्रीपी बिकॉज शी हैड सीन हिम राइट आफ्टर हिज मूवी LSD, लव सेक्स एंड धोखा. उसके बाद उन्हें देखा था एंड ऑब्वियसली उन्हें बहुत वेट लूज किया हुआ था, बहुत ही वियर्ड दिख रहे थे. तो बहुत ही क्रीपी रोल भी किया था और क्रीपी दिख भी रहे थे. और इधर जब राजकुमार राव ने प्रतिलेखा को पहली बार देखा, उनका एडवर्टीजमेंट देखा था, तो उनका रिएक्शन ये आया था, आई विश आई कुड मैरी हर. मतलब ही फेल इन लव, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था. लेकिन इसके बाद वो लोग दोनों मिले, उनकी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, सालों तक रिलेशनशिप में रहे. वो लोग मिले थे एक्चुअली 2011 में, जब वो सिटी लाइट्स की शूटिंग कर रहे थे और उसमें साथ में काम किया था. एंड देन दे गॉट मैरिड इन 2021. तो मतलब ऑलमोस्ट 10 साल तक वो लोग रिलेशनशिप में थे. और दोनों का मानना ये था कि पहले हम अपने अपने करियर्स पे फोकस करते हैं, लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल हो लेते हैं, जो मुकाम हासिल करना है वो कर लेते हैं एंड उसके बाद शादी करेंगे. एंड दे टुक दैट डिसीजन एंड 10-11 साल तक उन्होंने अपना रिलेशनशिप चलाया एंड देन शादी कर ली. सो दैट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी राजकुमार राव और प्रतिलेखा की.
1: इतने सालों में फीलिंग ही भूल गया.
2: कौन सी फीलिंग?

ये गाना बहुत प्यारा है और मेरा तो मतलब वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है ये, ब्यूटीफुल सॉन्ग का, आई जस्ट लव इट। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अगला गाना जो लेकर के आ रहे हैं आप लोग को राजकुमार राव की ही फिल्म का है, लेकिन भैया इसमें है हमारे पवन सिंह। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में बड़ा ही भोजपुरी तड़का चल रहा है, तो कैसे नहीं बजाएं हम। मन तो मेरा हमेशा रहता है कि एकाटो भोजपुरी ही गाना बजा दें, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि बिहारी मॉम है और कैसे नहीं बजाएं भोजपुरी गाना, कैसे हम करके नहीं बात करें। अगर आप लोग को पता नहीं है तो हम इंस्टाग्राम पे भी, मेरा एक हैंडल है बिहारी मॉम इन अमेरिका, यू नो बिहारी मॉम इन अमेरिका के नाम से, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो करिए अगर आप मेरी और बक बक गपशप सुनना चाहते हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं कुछ डेली व्लॉग्स, कुछ यहाँ वहाँ की बातें हम वहाँ भी करते रहते हैं। सो प्लीज़ डू फॉलो मी, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड आयुषी भूषण है मेरा हैंडल। फिलहाल ये राजकुमार राव फिल्म का की फिल्म का ये गाना है जिसमें हमारे पवन सिंह हैं, मतलब पवन सिंह की आवाज़ है और पिक्चराइज भी है।

0: अरे जान लेबू का पवन सिंह के गाना बजता है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए बड़ा मजा आता है, पटना का नाम लेते हैं ना, जिस दिन भी हम बिहार से हैं, पटना से एक पटनहिया फोन कर ही देता है। और वैसे ही कॉल आया था अभी निधि का, और निधि बताई कि अरे जो गाना तुम बजा रही हो ना, इसमें एक और पुराना गाना है जो किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में है, म्यूजिक बड़ा ही सिमिलर है। तो हम बोले चलो निधि देखते हैं, बजाते हैं वो गाना और पता करते हैं कि म्यूजिक सेम है या नहीं।
1: बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे।
0: क्या लगता है आपको, निधि सही बोल रही है?

0: तो ये था दो बेचारे फिल्म का गाना निधि की फरमाइश पर। निधि ने बताया भाई देखो बस अंतरा ही मैच कर रहा है आयुषी, पूरा गाना नहीं। तो हम मान गए निधि आपकी बात, और अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। एक हमारी और मित्र जो है मतलब उनका फोन आया था, मैं देखो बिहार सुनते सबके अंदर का बिहारी जाग जाता है यार, उनको मजा आ जाता है करने में। बट थैंक यू श्वेता फॉर कॉलिंग। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना हमसे रिक्वेस्ट किया है जो हम प्ले करके अपना शो खत्म करेंगे। बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके, और बस आपके कॉल्स हमें मोटिवेट करते हैं। शो जितना अच्छा हो सके उतना करें, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकें, बातें कर सकें। एंड यू गाइज मेड माई डे एंड होप आई डिड द सेम टू यू। तो आज के लिए विदा लेती हूँ, आप कल फिर मुझे सुनिएगा इसी समय 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। आपकी होस्ट आयुष यहाँ पे रहेगी फन एशिया 104.9 FM पे। फिलहाल इस गाने के साथ आज का शो खत्म कर रही हूँ, और ये गाना है श्वेता की फरमाइश पे। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे।
1: इसे मैं बहुत है।
2: अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने ऐसे तो नहीं कहा।
3: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो।

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
1: दी ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटैक्स. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: How may I help you?
6: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
5: Fear not, we have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. वेरी हैप्पी मंडे टू यू ऑल. और उम्मीद करती हूं कि आपका वीकेंड गुजरा बहुत ही खूबसूरत. अगले वीकेंड और इस वीकेंड के दरमियान ये 5 दिन मैं आपके साथ 2:30 बजे से 5 बजे तक रहूंगी और फिर आएगा लॉन्ग वीकेंड. वैसे आज के लिए एक स्पेशल बात आपको ये बतानी है कि मैं आज आपके साथ 5 नहीं बल्कि 6 बजे तक मौजूद हूँ. 5 से 6 तक जो है एक्स्ट्रा 1 घंटा आपके साथ ओनली ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आप भी मेरे साथ हैं 9722355555 के थ्रू. आज है जी मंडे एंड मंडे इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू ऑन सुनहरी किरण. आपकी पसंद के गाने, आपकी फरमाइशें, आपकी मनपसंद म्यूजिक को आपके मनपसंद रेडियो पे चलाया जाता है आपकी मनपसंद आरजे के थ्रू. सो कीप दोस कॉल्स कमिंग. 90 से ऑनवर्ड्स आपकी रिक्वेस्ट ले रही हूँ. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

शिवानी के लिए खास ये गाना प्ले कर रहे थे जी. आप सबकी रिक्वेस्ट ले रही हूँ मैं. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. दिस इज फिल्मी फरमाइश गोइंग ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 4:30 तक आपकी फरमाइशें लूंगी और आपकी पसंद के गाने आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे यूं ही प्ले होते रहेंगे विद मी यानी कि सुनहरी किरण. आगे बढ़ रहे हैं जी. अगला रिक्वेस्ट आपके लिए लगाने लगी हूँ. एक खूबसूरत गाने का रीमिक्स रिक्वेस्ट किया है इन्होंने, संग बाय जोनिता गांधी. सो वरुण की तरफ से ये रिक्वेस्ट. बट बिफोर दैट आपको बताऊं, अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं या फिर कोई स्लिप या फिर फॉल इंसिडेंट है एंड यू नो इस तरह की सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना है, पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, बहुत सारी ऐसी निटिग्रिटीज होती हैं सिचुएशन की जो हम लोगों को यूजुअली मालूम भी नहीं होती. दैट इज व्हाई वी नीड एन अटर्नी बाय आवर साइड जो कि हमारे लिए ये तमाम लीगैलिटीज हैंडल करे, सिचुएशन को संभाले और हम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर वेलबींग एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन अटर्नी उमर ख्वाजा इज ऑन योर साइड. नॉट ओनली विल ही फाइट योर केस, ही विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और द बेहतरीन बात जो है वो ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप अपने केस को जीत नहीं जाते. सो विद दिस विन विन सिचुएशन गिव हिम अ कॉल इफ यू और समवन यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. दैट नंबर इज 4693005046. 4693005046 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज अटर्नी उमर omar attorneyomar.com.

एंड इफ योर चाइल्ड इज गोइंग फ्रॉम थर्ड ग्रेड थ्रू फिफ्थ ग्रेड, तो मैं आपको बताऊं जी समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी कैन हेल्प देम बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स जो कि उनके लिए एक लाइफ टाइम के लिए काफी होंगी. ऑफकोर्स क्रिएटेड बाई एक्सपीरियंस कोचेस सुनही साइमन सैंटियागो एंड ऑड्रा लैंगस्टन, हु हैव मेंटर्ड डिबेट चैंपियंस और वैलेडिक्टोरियंस एज वेल एज आईवी लीग ग्रेजुएट्स. इनका ये ऑनलाइन प्रोग्राम डिजाइन किया गया है टू हेल्प यंग माइंड्स ग्रो इनटू कॉन्फिडेंट लीडर्स. So if you have any question, if you have a child in your car and they are listening to this and they have any question, then visit nextgenspeakersacademy.com, guys, and check it out. Ya phir you can give them a call and directly ask your question. 214-724-2867. 214-724-2867 is the number. So give your child the confidence to lead tomorrow starting today with a Next Gen स्पीकर्स एकेडमी. अच्छा जी, फिल्मी फरमाइश चल रहा है आपकी पसंद के गाने, एंड दिस वन इज गोइंग आउट टू ऑल द BHA moms हु आर राइट नाउ इन द ड्राइव थ्रू लेन टू पिक देयर चिल्ड्रन अप. गोइंग आउट टू यू गाइज फ्रॉम सिद्रा. सिद्रा, दिस इज फ्रॉम यू टू ऑल योर BHA mom friends.

जी हाँ, ड्राइव थ्रू की लाइंस ने कर रखा है BHA मॉम्स को क्रेजी। मेरे ख्याल सारी ही मॉम्स ड्राइव थ्रू की लाइंस में, हम सब क्रेजी हो जाते हैं बिकॉज इतने लंबे लंबे वेट्स और ऑल दैट। बट आई होप यू एंजॉयड दैट सॉन्ग एंड यू आर एंजॉइंग योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण व्हाइल यू आर वेटिंग एंड ड्राइविंग योर किड्स बैक। और बच्चा पार्टी के लिए हाई गाइज, फ्राइडे इज डेडिकेटेड टू यू एंड इफ यू और योर चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी ऑन एयर विद मी राइट हेयर ऑन फाइनेंशियल रेडियो इन माई afternoon show on Fridays which is chiller party 4:30 till 5 PM तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप के जो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है जहां हमारी किड्स जंक्शन की रील डलती है, उसमें आप नीचे अपने बच्चे का नाम, उसकी एज और उसकी क्लास बता सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू हैव योर प्रिंस और प्रिंसेस इन द स्टूडियो विद अस। अच्छा जी, ये तो हुई है बात, फरमाइशों का सिलसिला जारी है। मेरे पास दो तीन रिक्वेस्ट लाइंड अप हैं, सो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली जंप ऑन टू दिस नेक्स्ट रिक्वेस्ट दैट इज रिक्वेस्टेड बाय सुनैना। दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी मर्डर। दिस इज व्हाट कहो ना कहो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
7: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
8: लैपटॉप में।
7: इन्वेस्टमेंट?
8: गूगल ड्राइव।
7: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
8: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
7: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
0: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
0: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess, leave a plan.
10: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली।

0: Dinner. Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी @9797972654 और विजिट astroramji.com।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info, 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
5: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Phonasia 104.9 FM.

आपकी पसंद चल रही है आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मंडेज आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू. हर रोज लेकर आती हूँ आपके लिए एक नया फ्लेवर, और मंडे का फ्लेवर होता है सिर्फ आप, आपकी पसंद, आपकी फरमाइश. आप कोई डेडिकेशन करना चाहते हैं, किसी को कोई गाना या मैसेज रिले करना चाहते हैं थ्रू फनीशियस प्लेटफॉर्म, आई एम ऑल इयर्स. यू कैन गिव मी अ कॉल. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. गाने बहुत सारे लाइंड अप है मेरे पास. ये जो अगली फरमाइश प्ले कर रही हूँ जी, ये चित्रा जी की रिक्वेस्ट पे प्ले कर रही हूँ. लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप फाइनेंसेस अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो माई टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाए हेल्प करते हैं इंडिविजुअल as well as families to build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities or alternative investments bhi aapko offer karte hain. So no matter what your plan is, whether you are planning for long term wealth ya phir retirement ya phir aap apni investments ko grow karne ka plan kar rahe hain, my time equity will listen to you and devise a plan or a solution that is completely personalized to your goals. Give them a call, there's no harm in calling and asking or discussing. 469-702-1272 is the number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is mytimeequity.com. Chitra ji, this one is for you.

कुछ गाने वाकई ही बहुत मीठे और बहुत प्यारे होते हैं. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज. थैंक यू चित्रा जी फॉर रिकमेंडिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. रिक्वेस्ट बड़ी मजे मजे की आती हैं. कहीं हम एकदम से हैपनिंग हो जाते हैं और कहीं हम एकदम से रोमांटिक मेलेडीज की तरफ चले जाते हैं. दिस नेक्स्ट नंबर इज वेरी हैपनिंग एंड ऑल ऑफ यू जो इस वक्त कुछ हैपनिंग सुनने के मूड में है, दिस इज डेफिनेटली आई प्रॉमिस वन फॉर यू. लेकिन उससे पहले आई हैव टू टेल यू कि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हमारी कम्युनिटी को प्राउडली सर्व कर रहे हैं एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. सो लेट्स वेलकम एंड इंट्रोड्यूस लुनॉक्सी मेडिकल टू यू. LUNOXY इन केस यू वुड लाइक टू सर्च इट. फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लुनॉक्सी मेडिकल आपके लिए लेकर आता है प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, उसी के साथ इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज कराने हैं, सीटी स्कैन्स कराने हैं, कार्डियक डायग्नोस्टिक आपने कराना है, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलेगा. और यही नहीं बल्कि हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी ऑफर की जाती हैं इसी एड्रेस यानी कि लुनॉक्सी मेडिकल के रूफ के अंडर. एंड प्लस दे आर ओपन 7 days a week, 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM इन द इवनिंग एंड यू डोंट नीड टू बुक एनी अपॉइंटमेंट्स एज वेल. वॉक-इन्स आर ऑलवेज ऑलवेज वेलकम. सो ट्रीट योरसेल्फ नाइसली एंड विजिट लुनॉक्सी मेडिकल.

स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सुन रहे थे आप ये गाना, लेकिन आपको इसकी हिस्ट्री या हकीकत बताती चलूं कि दिस सॉन्ग वाज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बल्कि ओरिजिनली ये गाना रिलीज हुआ था 1981 में एक पाकिस्तानी पॉप एल्बम में, जो कि नाजिया और जुहेब हसन, दो बहन भाई जो हमारे बहुत ही पॉपुलर पॉप स्टार्स हैं साउथ एशिया के, उन्होंने ये गाना रिलीज किया था. और दिस सॉन्ग बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सॉन्ग्स एवर रिकॉर्डेड. दिस इज डिस्को दीवानेज, छोटी सी कहानी. और अब अगला गाना जी, नदीम साहब ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी बहुत ही प्यारी मिसेस को. सो दिस इज गोइंग आउट टू यू फ्रॉम नदीम. एंजॉय.

एंड दिस नेक्स्ट वन इज गोइंग आउट टू ऑल द टेक्सस बिजनेस ओनर्स. अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज वेयर यू नीड टू गो. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 और साथ ही साथ कंपेटिटिव रेट्स हैं, रिलायबल सर्विसेज हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपकी नीड्स के इर्द गिर्द प्लान को कस्टमाइज, एनर्जी प्लान को कस्टमाइज करते हैं. सो यू विल डेफिनेटली यू नो गेट व्हाट यू वांट विद तारा कमर्शियल एनर्जी. गिव देम अ कॉल 844-428-2808. द नंबर अगेन इज 844-428-2808, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज तारा एनर्जी TARA TaraEnergy.com. आप सबकी फोन कॉल्स का सिलसिला जारी है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, फॉर रिक्वेस्टिंग दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. और आपकी रिक्वेस्ट का जो ये सेगमेंट होता है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट किस्म के गाने जो है, जो हर बंदे के अपने थॉट प्रोसेस में चल रहे होते हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट के तौर पर आते हैं. एंड इट मेक्स अ ब्यूटिफुल बुके ऑफ सॉन्ग्स, जो हैप्पी भी हैं, हैपनिंग भी हैं, रोमांटिक मेलोडीज भी हैं, पार्टी नंबर भी है. जैसे कि अब ये नेक्स्ट गाना मैं आपके लिए जो प्ले कर रही हूँ, दिस अनदर रीमिक्स ऑफ अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग. उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी इस गाने के उस पार. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय जिमरान. जिमरान, दिस इज गोइंग आउट टू यू.

पति पत्नी और वो दो से लिया गया ये गाना, एक रीमिक्स था फ्रॉम एन ओरिजिनल फिल्म बाहर आने तक. बाहर आने तक रिलीज हुई थी जी 1990 में, एंड दिस सॉन्ग वाज ओरिजिनली संग बाय, देखिए, अनुराधा पोडवाल एंड मंगल सिंह. राजेश रोशन का म्यूजिक और इंदिवर के लिरिक्स थे इसके अंदर. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी इस बाहर आने तक की, मुझे आज तक याद है इसकी कहानी. अगर आपका कुछ पुराना मूवी देखने को दिल कर रहा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए. रूपा गांगुली, मुनमुन सेन, सुमित सहगल और तारिक शाह हमें इस फिल्म में नजर आए थे. अब इस गाने के साथ हम बढ़े हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर अभी आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है. आपकी पसंद के गाने आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ मौजूद हैं.

0: मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime, 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Floors clean.
10: Check.
9: Windows clean.
10: Check.
9: Kitchen clean.
10: Check.
9: Air ducts clean.
10: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
11: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotel, offices ya phir any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
12: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
13: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
14: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
15: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
14: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
15: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
13: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
3: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

यू ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. मैं आज आपके साथ 5 नहीं बल्कि 6 बजे तक मौजूद हूं. आई हैव एन एक्स्ट्रा आवर विद यू. सो म्यूजिक का सिलसिला इसी तरह मेरा और आपका जारी रहेगा. 4:30 बजे तक आपकी फरमाइशें लूंगी. 4:30 से 5 बजे तक हमारे साथ कनेक्ट होंगे संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेस, जो आपके क्वेश्चंस लेंगे लाइव. और फिर 5 से 6 तक देयर विल बी न्यूज एज वेल एज करेंसी, वेदर अपडेट, गोल्ड प्राइस अपडेट, ट्रैफिक अपडेट, बहुत कुछ आपके लिए लाइंड अप है इन 2-3 घंटों में, जो मजीद मेरे आपके साथ हैं टिल 6 o'clock. आप भी मेरे साथ हैं 972-235-5555 के थ्रू. और अब लेके आ रही हूं आपके लिए गिव अवे. दिस इज ब्रॉट टू यू बाय मिराज लाउंज. सो अगर आप अपना नेक्स्ट फेवरेट हैंगआउट स्पॉट ढूंढ रहे हैं तो मिराज लाउंज इज डेफिनेटली अ प्लेस दैट यू शुड चेक आउट. यू विल गेट प्रीमियम हुकर्स, डिलिशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स हैं जी, लाइव म्यूजिक है, एक्साइटिंग डीजे नाइट्स कंडक्ट करते हैं और साथ ही साथ लेडीज नाइट, एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज नाइट्स भी होती हैं. सो चेक देम आउट. दिस इज मिराज लाउंज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे. और एक और बात कि उनका मंडे थ्रू थर्सडे जो है वो स्पेशल आप कह लीजिए हैप्पी आवर चलता है. मुझे तो वो हैप्पी डे ही लगता है पूरा. 11 बजे से शाम 6 बजे तक आपके लिए ये हैप्पी आवर चलता है जहां हुक्का स्टार्ट एट 24.99 एंड शॉट्स फॉर ओनली 4.99. तो अब आपके पास ये मौका है $20 जीतने का ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और आपको क्या करना है जी, सवाल बहुत सीधा है और वो ये कि अगर आपने मिराज लाउंज जाना है और उनकी जबरदस्त कुजीन को ट्राई करना है और उनके हुक्कास को और उनकी ड्रिंक्स को ट्राई करना है तो आपको उनका एड्रेस मालूम होना चाहिए. मैंने अभी आपको हिंट दिया था व्हाइल आई वाज टेलिंग यू अबाउट मिराज लाउंज. मुझे कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि मिराज लाउंज कहाँ लोकेटेड है, पूरा स्ट्रीट एड्रेस बताइए और जीत लीजिए ये गिव अवे. दिस इज $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. आई एम गोइंग टू पिक 2 विनर्स. एक हिंट बस आपको दे देती हूँ, दे आर लोकेटेड इन मिकनी. यू विल हैव टू कॉल मी एंड tell me the full address. 972-235-5555 is the number to the studio.

और इसी गाने के साथ आया था आपके लिए गिव अवे. मैंने आपसे पूछा था मिराज लाउंज का फुल एड्रेस मुझे बता दीजिए और जीत लीजिए ये $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. सबसे पहले मैं आपको सही जवाब बता दूं, वेयर इज मिराज लाउंज लोकेटेड? दे आर लोकेटेड एट 3750 मिकनी रैंच पार्कवे स्वीट 100 मिकनी टेक्सास 75070. ये उसका कंप्लीट स्ट्रीट एड्रेस डालिए और पहुंच जाइए, अपने जीपीएस में डालिए और पहुंच जाइए मिराज लाउंज और एंजॉय कीजिए उनकी डिलिशियस बाइट्स एंड एवरीथिंग दैट दे हैव टू ऑफर. और इसी के साथ आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, निधि, पूर्वा, रविशंकर, सुगुना, किरण एंड मेनी मोर. कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है जी, और जैसे आप जानते हैं आई ऑलवेज पुट द नेम नंबर इन विच यू कॉल मी इन टू द मैथ फॉर्मूला और उससे जवाब निकलता है. और मैंने दो लकी विनर्स पिक करने थे. हमारे आज के जो लकी विनर्स हैं वो हैं जी रवि शंकर साहब एंड सगुना. सो सगुना एंड रवि शंकर साहब, कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों ने जीत लिया है ये $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट, डाइन इन, गेट अ $50 बिल एंड मिनिमम $50 एंड गेट $20 ऑफ योर बिल. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज ऑलवेज बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सबकी पार्टिसिपेशन का. दैट इज वॉट मैटर्स द मोस्ट टू मी. सो थैंक यू सो मच. आई स्टिल हैव अनदर गिव अवे फॉर यू. बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड.

कॉकटेल फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और दिस वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर फिल्म जो कि हमारे लिए रिलीज हुई थी. दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, और साथ ही साथ हमें इसमें नजर आई थी जी डायना पेटी. मैं नाम सोच रही थी कौन थी तीसरी एक्ट्रेस. और जी दीपिका वाज ओरिजिनली गिवन, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ इस फिल्म की. दीपिका को ओरिजिनली जो है वो गिवन दिया गया था द फर्स्ट चॉइस टू प्ले आइदर मीरा या फिर वेरोनिका, और उनको ही ऊपर छोड़ दिया गया था कि आपको इन दोनों में से कौन सा रोल लेना है. शी चोज वेरोनिका बिकॉज शी फेल्ट द शाई कैरेक्टर ऑफ मीरा वॉज टू सिमिलर टू हर प्रीवियस रोल इन लव आजकल, एंड दैट इज वाई वो कुछ डिफरेंट करना चाहती थी. तो उन्होंने वेरोनिका चुना और डायना पेंटी वॉज सब्सिक्वेंटली कास्टेड फॉर द रोल ऑफ मीरा. इंटरेस्टिंगली उनके अर्लियर इन देयर मॉडलिंग करियर्स डायना हैड एक्चुअली रिप्लेस दीपिका एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ ब्रांड विच वॉज मेबलिन. सो ये एक मतलब आप कह लीजिए फुल सर्कल होता है किस तरह चीजें लोगों के ये चेंज होती हैं. पहले कोई कुछ किसी रोल में होता है और फिर चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं. सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द मूवी कॉकटेल. और अब मैं प्ले करने लगी हूं आपके लिए एक ऐसी जादुई आवाज का गाना जो कि हमें अब डालस में सुनने को मिलने वाली है. बिल्कुल तैयार हो जाइए फॉर अ नाइट फिल्ड विद टाइमलेस मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस, और वो 90s का नॉस्टैल्जिया, वो म्यूजिक जो कि हमारी वो कहते हैं ना रग रग में बसा हुआ है. कुमार सानू इज कमिंग लाइव इन प्लेनो. एक्सपीरियंस कीजिए इस कॉन्सर्ट को. दिस इज अनफॉरगेटेबल 90s हैपनिंग ऑन सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. तो अगर सीट्स लिमिटेड हैं और पार्किंग बिल्कुल फ्री है, दैट इज दी हैव अ गुड थिंग टू नो. और एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. व्हेन यू विल बाय योर टिकट गो चेक आउट eventbrite.com, वहां पे इसके टिकट्स अवेलेबल हैं. कोई और सवाल है आपका तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 214-869-2668. वो नंबर है जहां आप कॉल कर सकते हैं टू हैव एनी क्वेश्चंस. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. दिस इज अनफॉरगेटेबल 90s कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. सो कुमार सानू की बात हो रही है तो लेट्स हिट दिस वन. कुमार सानू एंड कविता कृष्णमूर्ति.

0: जिंदगी एक रंगमंच है
1: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com। वी नीड टू टॉक।
2: अब क्या हुआ?
1: Nothing. It's not you.
2: Oh no.
1: It's the distance.
2: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
4: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
3: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sathiya.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
10: कितने आदमी थे?
11: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. आज वैसे तो आप मुझे 2:30 से 5 बजे तक सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ मौजूद हूं पूरे 6 बजे तक. और अब आपके लिए लेकर आई हूं एक और गिव अवे, विच इज ब्रॉट टू यू बाय फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार. अगर आप बेहतरीन लंच बफे ढूंढ रहे हैं तो दिस इज डेफिनेटली अ प्लेस वेयर यू नीड टू गो. आपको बताऊं जी कि दे आर ब्रिंगिंग fabulous fusion flavors to a brand new location. वैसे तो आप Fusion Republic को Richardson में try कर चुके हैं, लेकिन अब for your convenience they are opening in Irving. और buffet जो उनका lunch buffet है that is super grand. 25 से ज़्यादा items हैं उनके पास, featuring chaats and tandoor platters, exotic flavors as well as favorites like Siraga Samba, mutton biryani, apricot malai kofta, chili paneer, burrata chicken tikka और भी बहुत. और हर रोज लंच बफे लगता है आपके लिए, और डिनर में आला कार्ट्स होते हैं और लंच में बफे होता है. सो दे आर लोकेटेड ऑन 8080 वॉल्टन बुलेवार्ड इरविंग, और दिस इज वेयर यू विल फाइंड सम ऑफ द बेस्ट फ्लेवर्स इन DFW. सो जरूर विजिट कीजिए फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार, लोकेटेड इन रिचर्डसन, लेकिन अब खुल गया है इरविंग में लोकेशन. और ये जो आपके लिए मैं गिव अवे लेके आई हूं, ये इरविंग की लोकेशन का लेके आई हूं. यू कैन विन वन फ्री सिरागा सांबा या फिर दम मटन बिरयानी या फिर दम वेजिटेबल बिरयानी. इन तीनों में से कोई एक चीज आप जाके खा सकते हैं अगर आप जीत गए ये गिव अवे. तो आपको क्या करना है, अब मैं आपके सामने बल्कि आपके लिए एक म्यूजिक प्ले करूंगी. ये है गाने का शुरू का म्यूजिक जो आप सुनेंगे और मुझे कॉल करके बताएंगे कि ये गाना कौन सा है. सो आई एम गोना प्ले दिस म्यूजिक द फर्स्ट 25 सेकंड्स ऑफ दिस सॉन्ग एंड देन यू विल गिव मी अ कॉल 9722355555 और मुझे बताइए ये कौन सा गाना था और जीत लीजिए ये मौका टू विन सिरागा सांबा, दम मटन बिरयानी या फिर दम वेजिटेबल बिरयानी, एनी वन ऑफ देम फ्रॉम फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन लोकेटेड इन इरविंग. सो लेट्स बिगिन. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग.

0: सुन लिया आपने ये म्यूजिक, मुझे कॉल करके बताइए। इतने में कोई और दूसरा गाना लगा के आपकी कॉल्स रिसीव करूंगी, फिर जब हम वापस आएंगे तो करेक्ट आंसर बता के आपको ये गाना भी जरूर सुनाऊंगी।
1: तुझे तक तक तक

जी हाँ, फ्यूजन रिपब्लिक लोकेटेड इन अर्विंग की तरफ से आया था आपके लिए गिव अवे. यू हैड द चांस ऑफ विनिंग दिस फ्री सिरागा सांभा या फिर दम मटन बिरयानी या फिर दम वेजिटेबल बिरयानी. और गाने का मैंने शुरू के 20 सेकंड्स आपको म्यूजिक के सुनाए थे और आपसे पूछा था कि मुझे बताइए कि ये है कौन सा गाना. आप सबने दिया बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब. आप सब लोग बहुत सब कुछ जानते हैं जी बॉलीवुड और गानों के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आज की जो हमारी लकी विनर है वो है जी सागर कोटक. सागर कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. करेक्ट आंसर आपको बताती चलूं, बल्कि प्ले ही करती चलूंगी. दिस करेक्ट आंसर वाज पहला पहला प्यार बाय अरमान मलिक, टेकन फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स वेयर रोमांटिक मेलोडीज आर कंसर्न्ड. अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि सागर हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर फ्यूजन रिपब्लिक इन अर्विंग पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल वन ऑफ दीज 3 dishes दैट आई हैव मेंशन टू यू. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया. फनीजा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है और मेरी तरफ से आपको दिल से शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग बिकॉज दैट इज वॉट रियली रियली मैटर्स द मोस्ट टू मी कि आप फोन उठाते हैं और आप टाइम निकालकर कॉल करते हैं. थैंक यू.

और इसी के साथ जी आपको बताती चलूं कि 4:30 से 5 बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड होंगे संजय माथुर, अटर्नी संजय माथुर फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेज. ही विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस लाइव रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल इंजरी एज वेल एज फैमिली और इमिग्रेशन लॉ भी. बहुत जो भी आपका सवाल है आप ऑन द एवेन्यूज ऑफ फाइनेंशिया उनसे पूछ सकते हैं. 4:30 यानी कि 4:35 बिकॉज हमारी एड ब्रेक के बाद 4:35 से 5 बजे तक संजय माथुर जी हमारे साथ मौजूद होंगे. और आपको अगर मैं होल्ड पे डालूं, आप कॉल करें एंड यू आर ऑन होल्ड एंड यू कैन हेयर हिम रिप्लाइंग और टॉकिंग और आंसरिंग सम प्रीवियस क्वेश्चन. सो प्लीज होल्ड योर स्पॉट इन द लाइन, डू नॉट डिस्कनेक्ट, क्योंकि अगर आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही है दैट मीन्स मैंने आपको कनेक्ट कर दिया है और अगला नंबर आपका है सवाल पूछने के लिए. सो प्लीज होल्ड योर स्पॉट, बी अ लिटिल पेशेंट विद दैट. और वंस अगेन द स्टूडियो का नंबर इज 9722355555.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Heere moti, main na chahu.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है, ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: No, not another restaurant again.
9: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
8: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
10: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
8: Floors clean.
11: Check.
8: Windows clean.
11: Check.
8: Kitchen clean.
11: Check.
8: Air ducts clean.
11: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
12: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फोनेशिया 104.9 FM।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: Hello Texas Parivar. क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता है?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट

0: Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites. Straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
1: And now at a bigger location, just three doors down, with limited reservation available.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ किरण आपके साथ. आप सोच रही हैं कि where is Marvin? He is not in the studio today, so I will be here with you till 6 p.m. I have lots of things lined up for you. Weather आपके लिए आ रहा है, traffic, currency update, gold price update, so much more that is happening. So अगला गाना play करती हूँ सीधा जाके, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जी कि your dream of home may be closer to you than you think. और किस तरह हुए ड्रीम होम मॉर्गेज. 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प कर रही हैं फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री टू टर्न देयर होम ओनरशिप ड्रीम इनटू अ रियलिटी. पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपके लिए क्रिएट करते हैं, विच इज एन एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री एंड अ स्मूथ प्रोसेस. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स और उनकी एक्सेप्शनल टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन फॉर यू टेलर्ड अराउंड योर नीड्स. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, या आप अपग्रेड कर रहे हो, या आप रीफाइनेंसिंग कर रहे हो, और इवन इफ you're looking for something commercial, start your home ownership journey and all your loan journeys with the Dream Home Mortgage. Give them a call, 972-245-5626. 972-245-5626 is that number. Ya phir aap unki website visit kijiye, which is dreamhomemortgage.com.

0: और इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हुए आपको बताती चलूं जी कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूएस. चाहे आप इंडिविजुअल हो या आपके पास स्टार्टअप हो या फिर यू हैव एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर करते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि टेलर करिए जाते हैं अराउंड योर नीड्स. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting. मतलब ये कि सब कुछ they will cover for you. और इसी के साथ business advisory services भी देते हैं आपको. So they help keep your finances organized, compliant, as well as future ready. Trusted, efficient, and committed to your success. That is AG Fintechs. Make them your partner in building a stronger financial future. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. ये सारी बात सुन के आपके जहन में कोई भी सवाल आया है तो जस्ट गिव देम अ कॉल. दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. 469-942-9888. 469-942-9888 is that number, or you can visit their website, which is agfintechs.com. Once again, the website is agfintechs.com. With that, we are heading on to a short break. I will see you right after this. Stay tuned.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
2: अरे यार, घर मिल गया.
3: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
4: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
3: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
4: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट.
5: Hoko.
6: अरे बस भी करो यार.
7: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
4: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
8: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
9: एक और लड्डू ले लो.
10: थोड़ी और बिरयानी.
9: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा.
11: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए.
12: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए. स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स. कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
13: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
4: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: कितने आदमी थे?
10: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

मैं हूँ किरण, आप सुन रहे हैं दिस एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। और अब वक्त आ चला है जी आपको बताने का वेदर अपडेट। आज है मंडे, अगस्त 31st। अगस्त का महीना भी खत्म हुआ चाहता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने रह गए हैं बिफोर वी एंटर इनटू 2027। और आप जानते हैं ना कि सितंबर का महीना शुरू होने से थोड़ी सी हलचल सी शुरू हो जाती है, कुछ हॉलीडे का फ्लेवर आने लगता है, और अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल ही हम हॉलीडे मोड में चले जाते हैं। बहरहाल टुडे इज अगस्त 31st। स्टूडियो में हो रहा है 5:27 5:27 PM और सिटी ऑफ मेकिनी में इस वक्त है जी 101 degrees। आज का दिन रहा सनी हॉट विद हाईज अराउंड 100 and 101, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर, लोज इन दी अपर 70s होने वाले हैं। पोलन काउंट आज का है 9.3 विच इज मीडियम हाई, एंड रैगवीड Elm as well as grass is what is bothering where pollen is concerned. आपको ये भी बताती चलूं कि हम पोलन अलर्ट पे हैं मंडे यानी कि आज सुबह 7 बजे से कल यानी कि आज रात कह लीजिए 12 बजे तक जो है ये पोलन अलर्ट हमारा चलने वाला है। वंस अगेन, रैगवीड, एल्म एंड ग्रास इज वॉट इज बॉदरिंग। अगर आप इन चीजों में से किसी के पोलन से परेशान होते हैं तो इट इज टाइम नाउ फॉर यू टू टेक योर रेमेडीज। यूवी इंडेक्स इज 9 to 10, विच इज ऑफकोर्स हाई, क्वाइट हाई। तो अगर आप शाम में कुछ बाहर एक्टिविटी कर रहे हैं तो कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन के साथ हाइड्रेशन अपनी जारी रखिए ताकि आपकी स्किन बेटर रहे, और साथ ही साथ आपको सर का दर्द ना हो, जो शदीद दर्द के झटके होते हैं जब हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाती है। सनराइज आज का हुआ सुबह 7 बजे, जबकि आज का सनसेट होगा शाम 7:53 PM। दैट वॉज योर वेदर फोरकास्ट फॉर टूडे।

अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर कोई पैशन हेल्थ आपके नेटवर्क में नहीं आता, तो आपको बताएं जी कि देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपको अलाउ करता है टू स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद देम फॉर जस्ट $85 अ मंथ. दैट इज एन अमेजिंग डील जो वो आपको दे रहे हैं. योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स होंगे, प्रिवेंटिव केयर होगी, क्रॉनिक डिजीज और साथ ही साथ मेडिकेशन मैनेजमेंट. एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पैकेज. इसी के साथ टेली हेल्थ व्हेन अप्रोप्रिएट, केयर कोऑर्डिनेशन प्लस 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services as well. So this is all covered in $85 a month, which when you don't have a health insurance or Passion Health Primary Care does not fall in your network. Aapka koi bhi sawal hai sare situation ko leke, to aap unhe call kar sakte hain, text kar sakte hain, and they will get back to you and guide you and help you find smarter and easier solutions for this. That number is 214-666-6259. नंबर एक बार फिर बता रही हूँ, 214-666-6259. और यू कैन ऑल्सो विजिट देयर वेबसाइट. लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट passionhealthphysicians.com. वंस अगेन, दैट इज passionhealthphysicians.com. Passion Health is where they're, you know, they make it a point that our health, your health is their passion. So they're serving the community, they're serving you. This program is not a health insurance program, I must remind you that, and eligibility restrictions apply.

0: It is time to head on to a short break, but before that, I will give you the currency update. G K US dollar aaj kahan stand kar raha hai with respect to other currencies in the world. So right now, according to xrates.com, euro is pe trade kar raha hai 0.86 pe. British pound is trading at 0.73, jabki Indian rupee 95.21 pe stand kar raha hai. Canadian dollar 1.38, jabki Pakistani rupee 277.29 Pakistani rupees are trading for one US dollar. Nepali's rupee 152.41 pe stand kar raha hai, jabki Bangladeshi taka 122.88 Bangladeshi takas are trading for one US dollar. Ye tha aapka currency update. Ab jab hum is break se wapas aayenge, to I will give you the gold price update ke aaj sone ka bhav kya raha. Khas taur pe main aapko batati hoon ke sona per ounce as well as per gram kya hai, taki agar aapka kuch sona khareedne ko dil kar raha hai to aapko exactly pata ho ke aaj kya hai sone ka bhav. Aur isi ke saath deni hai aapko traffic update aur ek giveaway bhi hai mere paas aapke liye. Ye sab kuch next 20 minutes. Stay tuned, they are very important. Bane rahiye mere saath.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे.
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे.
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
5: बेटा 95% आए.
6: हाँ मम्मी.
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
4: मेरा?
5: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
4: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए.
7: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
2: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
8: जिंदगी एक रंगमंच है,
9: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो, और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
10: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
10: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
6: साथिया।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

आई हैव अनदर 15 मिनट्स विद यू. मैं हूँ किरण आपके साथ. दिस इज सुनहरी किरण और आप सुन रहे हैं मुझे 104.9 FM फानेजिया रेडियो पे. बिल्कुल सही चैनल पे हैं आप. ट्यून्ड इन बनी रहिए. मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे. अच्छा जी, अगर मतलब ऐसा आपको लगे कि किसी रेस्टोरेंट का नाम सुनकर आपकी मेमोरीज वापस आ रही हैं, कुछ यू नो इट ब्रिंग्स बैक दैट फ्लड ऑफ मेमोरीज, वो जायका, वो एहसास आपको वापस आता हुआ फील हो रहा है, तो एग्जैक्टली वो जगह तो जाना ज़रूर बनता है. और ऐसा ही एहसास मिलता है जब आप होको के बारे में सुनते हैं. होको हैज़ बिन फॉर जेनरेशन्स अक्रॉस इंडिया एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल इन नॉर्थ टेक्सस एज वेल. चाहे आप उनकी लेजेंडरी चना पूरी मिस कर रहे हों, या आपको उनके आइकॉनिक सैंडविचेस याद आ रहे हों, या फिर फ्लेवरफुल करीज और द फेमस होको कोल्ड कोको दैट पीपल एब्सोल्युटली स्वेयर बाय, यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप टू इंडिया बिकॉज होको इज नाउ हेयर. और वो कहाँ लोकेटेड है, यही आपका सवाल है. मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, फ्रिस्को में लोकेटेड है जी. आपको मुझे उसका फुल एड्रेस बताना है, होको कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि आप को होको जाना होगा तो आपको जीपीएस में एड्रेस तो डालना पड़ेगा. और उसके लिए थोड़ा सा सर्च कीजिए और मुझे बताइए, क्योंकि ये आपके पास चांस है टू विन एन आलू टिक्की चाट, अ प्लेट ऑफ आलू टिक्की चाट फ्रॉम होको. और बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछना है मैंने, और सवाल पूछ चुकी हूँ. होको का मुझे कंप्लीट एड्रेस बता दीजिए. सिटी इज फ्रिस्को, दैट इज द हिंट दैट आई एम गिविंग यू. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. फोन उठाइए, कॉल मिलाइए और जल्दी से जवाब दीजिए.

और जी होको की तरफ से आपके लिए गिव अवे आया था. यू हैव दिस चांस ऑफ विनिंग एन आलू टिक्की चाट प्लेट फ्रॉम होको. और सवाल बड़ा सिंपल था कि आपको मुझे उसका फुल कंप्लीट स्ट्रीट एड्रेस बताना था. जाने के लिए एड्रेस डालना जरूरी है और वो एड्रेस है जी 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1052 फ्रिस्को टेक्सस 75034. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे कॉल करके जवाब दिया, इंक्लूडिंग प्रियंका, मोनिका, शिल्पा, निधि, अनिर्बान एंड मेनी मोर. अभी भी फोन लाइन बज हो रही है बट गाना खत्म हो चुका है जी. गिव अवे का टाइम हो चुका है खत्म. एज आई ऑलवेज से विद मी, आई ऑलवेज टेक जिस सीक्वेंस में आप मुझे कॉल करते हैं उसको एक नंबर असाइन होता है और वो सीक्वेंस, वो नंबर मैथ के फॉर्मूले में डाला जाता है और जी आपका लकी नंबर निकलता है एंड योर लक डिसाइड्स हु इज द विनर फॉर द गिव अवे. और आज की जो हमारे लकी विनर है वो है अनिर्बान बागची. सो अनिर्बान कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर होको पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर आलू टिक्की चाट प्लेट फ्रॉम होको. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. पानी जी इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. और खास तौर पे जब आप अपना टाइम निकालते हैं, यू टेक दैट टाइम आउट, यू कॉल. कुछ लोग तो हर गिव अवे में यू नो यू टेक दैट टाइम एंड कॉल. Thank you so much. Definitely, you will be a winner. If not today, then tomorrow.

और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. जी आज इस वक्त अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,446.27 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $142.95. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 50 सेंट्स का इजाफा हुआ जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $16.46 का इजाफा देखने को मिला. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वे योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर विद मी ऑन सुनहरी किरण. और विद दैट मैं देने लगी हूं आपको ट्रैफिक अपडेट और इसी के साथ इट इज अबाउट टू रैप अप द शो फ्रॉम माई साइड. देर आर अ फ्यू कोलिजन दैट आई कैन सी तो वो मैं आपको वन बाय वन बताती जाती हूं. देर इज वन कोलिजन दैट इज रिपोर्टेड एट IH30 टूवर्ड्स 45 ईस्ट बाउंड जिसकी वजह से 3 out of 7 lanes are blocked. The severity of this incident is reported quite high. About 40 minutes पहले ये incident report हुआ था तो probably यहाँ पे कुछ clearing up आपको अब नजर आने लगेगी. There is another collision that is reported about 25 minutes ago at US 75 towards SH 121, which is Sam Raymond Tollway northbound, जिसकी वजह से 4 out of 7 lanes are blocked, including the exit lanes. Bahut sari traffic, ambulance has been called. The severity of the incident is extremely high. So you are going to find a lot of backup at this spot, definitely. There is another incident that is reported at US 75 towards Virginia Parkway northbound. Jiski wajah se 3 lanes are blocked. The severity of this incident is reported high as well. So yeah, kyunki ye incident abhi koi 20 minute pehle report hua hai, isiliye you are going to find a lot of backup if you are heading out at this spot. But that's pretty much all that I can see where traffic is concerned. Aur isi ke saath time aisa hai ji, it is rush hour, of course, traffic hour. To agar aap roads pe hain to be very careful, be vigilant and be very patient. That is all that I can tell you. And with that, le rahi hu aapse vida. Thank you for connecting with me this evening. Aapke saath rahungi kal ek baar phir. I am here with you right here, same channel, same like 5 days a week, 2:30 PM till 5 PM sunte hain aap mujhe afternoon drive time with Sunehri Kiran pe. Thank you for connecting and have a lovely rest of your day.

0: जिंदगी का नेक्स्ट मूव सब सेफली पहुंचता है। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
1: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
2: लैपटॉप में।
1: इन्वेस्टमेंट?
2: गूगल ड्राइव।
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
2: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
0: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
0: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

काफी डिमांड कर रहे हैं इस गाने में सलमान खान। दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो जी। हाँ, आज आप लोगों के साथ थोड़ा जल्दी आई हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टे। जल्दी मीन्स लाइक 5 to 7 एज यू नो इज मार्विन्स टाइम, बट आज मैं आप लोगों के साथ रहूंगी रात के 9 बजे तक। तो यस, वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन एंड सम गिव अवे एंड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू। बट फिलहाल आपको बताना चाहती हूँ श्री कृष्णा ज्वेलर्स के बारे में। श्री कृष्णा ज्वेलर्स इज सेलिब्रेटिंग श्रवण मासम एंड 10 ग्लोरियस ईयर्स इन डालस विथ 10 स्पेक्टेकुलर ऑफर्स। 10 10 10 10 10 बिल्कुल फ्रॉम फ्री सिल्वर एंड गोल्ड गिफ्ट्स टू डायमंड एंड सॉलिटेयर ज्वेलरी प्लस एक्साइटिंग सेविंग्स ऑन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। देयर इज समथिंग स्पेशल वेटिंग फॉर यू। आपके लिए है वहां पर कुछ ना कुछ स्पेशल हर किसी के लिए। सो यस, गो देयर। वेयर डू यू हैव टू गो? 13145 मेन स्ट्रीट स्वीट 220 फ्रिस्को, या फिर आप नंबर उनका कॉल कर सकते हैं विच इज 4302311111। सो द सेलिब्रेशन इज ऑन थ्रू सेप्टेम्बर 17th। जी हाँ, आज है अगस्त का आखिरी दिन महीने का और सितंबर 17th तक ये ऑफर है, यानी कि 17 दिन है आप लोगों के पास टू गो टू श्री कृष्णा ज्वेलर्स इन फ्रिस्को। एंड एज आई सेड, दे आर सेलिब्रेटिंग 10 स्पार्कलिंग ईयर्स इन डालस एंड दे वांट टू डू दैट विद यू, विद देयर बिलवड कस्टमर्स, पीपल हु फॉर साउथ ईस्ट एशियन डिसेंट, जो हमारे लिसनर्स हैं बहुत प्यारे प्यारे, बिकॉज आप लोगों के लिए कुछ बहुत एक्साइटिंग है वहां पर अलॉन्ग विद ऑफर्स। बट विद दैट लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड इसके बाद एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद यहीं लौटेंगे। 9723555555 इफ यू हैव अ सॉन्ग दैट फिट्स द मूड ऑफ मंडे इवनिंग। पारो इन द हाउस।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
3: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
2: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW get ready to relive the magic of Kumar Shanu live unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

वेलकम बैक दोस्तों, यारों मैं हूँ पारो। और जैसे जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन्हें बता दूं कि आप लोगों के साथ 9 बजे तक रहूंगी। दैट मीन्स यस, विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग, सम इंटरेस्टिंग इवेंट्स दैट आर कमिंग एंड टुडेज डे। आज का जो दिन है दैट इज द लास्ट डे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड इट इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर एवरीबडी। यस, बट फॉर सम पीपल स्पेशली फनी शरीरियो फोन कट गया, बट इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट, अभी मैं किसी से के साथ कनेक्ट कर रही थी लेकिन इट गॉट डिसकनेक्टेड। 972355555 पर कॉल कर सकते हैं। और मंडे इवनिंग मुझे ऐसा लगता है कि इज अ वेरी स्पेशल टाइम बिकॉज वी आर स्टार्टिंग, ये एक आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है इन अ वे, वी आर स्टार्टिंग बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस वीक एंड यू नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ कॉलेज सेमेस्टर। स्कूल तो कुछ कई सारे एक दो हफ्ते पहले शुरू हो गए लेकिन दिस इज काइंड ऑफ द बिगिनिंग, राइट? बहुत ज्यादा लेबर डे वीकेंड जब आ रहा होता है तो इट फील्स लाइक अ बिगिनिंग ऑफ अ सेमेस्टर, बिगिनिंग ऑफ अ टाइम। एंड इंटरेस्टिंगली टूडे इज मंडे, सो यस इट इज अ बिगिनिंग बट ऑल्सो इट इज अ क्लोजर। बंद हो रहा है अगस्त का महीना, बंद हो रहा है समर का टाइम। ऐसा लगता है मुझे जब भी अगस्त खत्म होता है ये समर, वैसे तो गर्मी है डैलस में, कल भी रहेगी लेकिन आई गेट दैट फीलिंग दैट इट इज एन एंड एंड समथिंग इज स्टार्टिंग, स्पेशली विथ सेप्टेम्बर। ऐसा लगता है कि यू आर इंचिंग क्लोजर टू द एंड ऑफ द ईयर। साल कैसे निकल गया, फिसल गया, पता ही नहीं चलता। एंड व्हेन आई वाज सेइंग दैट दिस डे इज वेरी स्पेशल फॉर अ पर्टिकुलर कल्चर, और उनका ये पर्टिकुलर दिन है, कौन सा वो कल्चर है? साउथ ईस्ट एशियन कल्चर नहीं है, कोई और कल्चर है, बताऊंगी आपको थोड़ी सी देर में। फिलहाल लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। ये जब आप गाना सुनेंगे तो आपको एक आवाज जो सुनाई देगी, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी, आइकॉनिक वॉइस ऑफ द सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी? लास्ट दिस बोथ सेंचुरीज। और ये जो वॉइस है इसकी बात करेंगे आफ्टर दिस सॉन्ग, मेल वॉइस।

ये सच्ची बात है कि ये चलते चलते जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू सी सोनू निगम आपको टिकट लेना पड़ेगा. पर यस, ये आपसे वादा जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही है. सोनू निगम साहब आते हैं, बड़े जोश से आते हैं. एंड सो लेट मी टेल यू अबाउट हिज कॉन्सर्ट, जो रेवोल्यूशन होने वाला है. रेवोल्यूशन लेकर आएगा और नाम भी रेवोल्यूशन है. सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. सैटरडे सेप्टेम्बर 26th को है ये, 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके फेवरेट गाने और वही आवाज, सोनू निगम साहब की आइकॉनिक आवाज ऑल लाइव. टिकट्स कहां से मिल सकते हैं आपको? टिकट मास्टर पर जा सकते हैं आप, और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉल भी कर सकते हैं नंबर विच इज 1-855-360-SHOWS. एंड सो दिस इज द रेवोल्यूशन, सोनू निगम लाइव एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फनिशन नेटवर्क. चलिए, सोनू निगम साहब की जब भी बात होती है मेरा बड़ा मन करता है कि मैं कोई सवाल पूछूं, और तो मैं सवाल पूछूंगी आप लोगों से. एंड आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट फन पिज्जा किचन से, नहीं सोनू निगम से जी से रिलेटेड, लेकिन अवार्ड होगा या विन आप करेंगे फन पिज्जा किचन का गिफ्ट कार्ड. यस, सो लेट मी टेल यू अबाउट फन पिज्जा किचन. फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप. अगर आप नहीं गए हैं अभी रिसेंटली वहां पर और आपने ये नहीं खाया है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, यू नीड टू डू दैट. Because these are just aren't pizzas. They are full-on flavor fiesta. Ye fresh fiesta veggie se lekar fiery pollo loco, the seafood packed senor camarón, where every bite is bold, exciting and made to impress. To aap ja sakte hain, jarur jana chahiye aapko Fun Pizza Kitchen to taste the new obsession for yourself. Nye flavors, nye obsession. Zyada details ke liye aap jante hamari website Fun Pizza Kitchen ki, which is funpizzakitchen.com. Ab aap kaise jeet sakte hain $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a simple question. And ek important baat jo main hamesha kehti hoon, agar aap ye award ke liye aap ja sakte hain Fun Pizza Kitchen Frisco mein to collect this, then and you have not won this in the last 1 month, only then you participate. Otherwise, give the chance to somebody else, because otherwise you will be disqualified if you cannot if you have already won it. So that's just a requirement. Lekin agar aapne nahi jeeta hai aur aap jante hain, sawal bada aasan hai. Sonu Nigam sahab ko ek national award mila hai. Aapko mujhe batana hai ki kaun sa saal aur kaun si film, kyunki film ka naam bahut famous hai, to main isko thoda sa isme add kar deti hu ki kaun sa naam film ka hai aur kaun sa saal hai. Do part hai sawal ke, and the first person to give the right answer is going to get the $10 phone lines bajdi shuru ho gayi hai meri from Fun Pizza Kitchen. Suniye ek ye gana Sonu Nigam sahab ka, is gaane ke liye nahi, kisi aur gaane ke liye mila hai, itna aasan nahi hai. And with that I will be back

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com।
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराटा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: We need to talk.
10: अब क्या हुआ?
9: Nothing. It's not you.
10: Oh no.
9: It's the distance.
10: Distance? We live 10 minutes apart.
9: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
11: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
14: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
15: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. बहुत सारे लोगों ने कॉल किया. एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली, मुझे लगता था बहुत ही आसान सवाल है जो मैंने पूछा कि सोनू निगम साहब को नेशनल अवार्ड किसके लिए मिला, लेकिन दो तीन चीजें मैंने नोट करी. एक तो एक दो बातें एक्चुअली. एक तो ये कि फ्यू पीपल वर सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स. उनके बहुत सारे गाने हिट हैं, उनको किसी और गानों के लिए फिल्म फेयर मिला है, सो आई कैन अंडरस्टैंड द कन्फ्यूजन. बहुत बहुत ज्यादा उनके कुछ समय के गाने हैं, स्पेशली अर्ली 2000s लेट 90s के, दैट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड रियली वेरी वेल सॉन्ग. तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है. लेकिन नेशनल अवार्ड, और कुछ लोगों ने ये भी कहा उनका पहला नेशनल अवार्ड, एक्चुअली पहला आखिरी एक ही मिला है उन्हें, एंड दैट इज फॉर 2003 कल होना हो, एंड दैट इज कंसिडर्ड अ टाइमलेस क्लासिक जो उसका टाइटल सॉन्ग है कल होना होगा. एंड सोनू निगम साहब ने कहा है कि वो ये मानते हैं कि जब वो नहीं रहेंगे तो इस गाने से दुनिया उनको याद रखेगी. बट हैविंग सेड दैट, मुझे तो लगता है कि उनको हम सभी गानों से याद हमेशा ही रखेंगे, एंड ऑल जनरेशंस रियली ही अपील्स टू ऑल द जनरेशंस. एंड जब भी सोनू निगम साहब की बात होती है और उनके मैं करियर के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे एक गाना अक्सर याद आता है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है उनका, द फर्स्ट सॉन्ग दैट मेड हिम अ सेंसेशन, फिल्म का गाना, क्योंकि उनके एल्बम सॉन्ग्स भी हैं जिन्होंने सेंसेशनल उन्हें किया है. बॉर्डर की वजह से उनको बहुत बहुत ज्यादा खिताब मिला, लेकिन बॉर्डर के पहले भी एक गाना आया है विच एक्चुअली रियली गेव हिम द प्लेटफॉर्म, और इसके लिए वो टी सीरीज को बहुत ज्यादा मानते हैं. मुझे लगता है समझ ही गए होंगे कि कौन से गाने की कर रही हूँ बात. सो लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग. फिलहाल बोलना चाहती हूँ ऐश्वर्या त्रिवेदी जी, मुबारक हो आपको $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन.

दिस वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग. ये फिल्म का फिल्म बेवफा सनम तो खैर इतनी नहीं फेमस है, लेकिन इस गाने ने बहुत ज्यादा सोनू निगम साहब को फेमस कर दिया. लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया. यस, दिस फिल्म एक्चुअली इसका ऑडियो रिलीज हुआ था 93 में और 95 में ये फिल्म आई थी. लेकिन सोनू निगम साहब को उसके बाद भी कुछ साल स्ट्रगल करना था जब तक बॉर्डर नहीं आई. और जब बॉर्डर आई और जब उनको आमने सामने रखा गया, लाइक व्हेन ही हैड टू व्हेन वी परफॉर्म्ड विद अदर सिंगर्स, तब पता चला दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट दैट्स व्हेन म्यूजिक डायरेक्टर्स फेल्ट दैट यस ही इज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट. सोनू निगम साहब की मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है दैट ही इज वेरी क्राफ्ट बेस्ड. मतलब ही हिज फोकस ऑन क्राफ्ट और उनको जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है. एंड दैट इज समथिंग नॉट यू सी वेरी कॉमनली इन न्यू जनरेशन सिंगर्स. ऑल्दो कोई कह सकता है कि भाई सोनू निगम साहब इतने भी न्यू जनरेशन के नहीं है, बट हिज नॉलेज इवन एट दैट टाइम लाइक इट्स जस्ट फिनोमिनल. ही इज वेरी वेरी मच इनटू द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड द निटी ग्रिटी ऑफ सिंगिंग. और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सोनू निगम साहब से कोई सीखेगा म्यूजिक तो दैट्स जस्ट अ हेवनली थिंग फॉर एनी सिंगर. फिलहाल एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर. इट इज प्राउड टू अनाउंस आवर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिस्को लोकेशन. उनकी एक नई लोकेशन फ्रिस्को में खुल गई है. फ्रॉम ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरीज टू पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी, जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रेड लाइट थेरेपी, फंक्शनल न्यूट्रिशन, दे डिलीवर ऑल दिस एंड पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन केयर डिजाइन टू हेल्प यू परफॉर्म एट योर बेस्ट. ये प्रोफेशनल एथलीट्स, एंटरटेनर्स और कम्युनिटी लीडर्स के ट्रस्टेड हैं एंड दे बिलीव दैट एवरी पेशेंट डिजर्व्स वीआईपी ट्रीटमेंट. इसमें मुझे लगता है टेक्सास स्टार और फनीशा की एक ही थिंकिंग है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो उनके लिए उनके पेशेंट्स हैं, हमारे लिए हमारे लिसनर्स हैं, ये सब वीआईपी हैं. विजिट texasstarrehab.com टू स्केड्यूल योर कंसल्टेशन टुडे एंड दे आर कन्वीनियंटली सर्विंग फ्रिस्को एंड अरवेंग. सो टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर, इनका मोटो है मूव बेटर, फील बेटर, लिव बेटर. एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगी आपको, लेकिन लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग. और इस गाने के साथ जुड़ी हुई है ये इंटरेस्टिंग कहानी. सो फर्स्ट लिसन टू द सॉन्ग और उसके बाद बताती हूँ कि क्या है इंटरेस्टिंग कहानी. सोनू निगम साहब ने बेचारे, मुझे ऐसा लगता है बेचारे तो कह नहीं कह सकते क्योंकि अभी देखना उनका कॉन्सर्ट होगा तो दूर दूर तक लाइन लग जाएगी, लोगों को पार्किंग नहीं मिलेगी. आई मीन ही इज सच अ फिनोमेना. लेकिन उस समय एज अ यंग स्ट्रगलिंग सिंगर, डिस्पाइट प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल सिंगर ऑफ हिज टाइम, ही स्ट्रगल्ड इमेंसली. बट कहते हैं ना, हीरा जो है वो जब चमकता है तो सबको दिखता है.

1994 में आई थी, 1942 अ लव स्टोरी, और इस गाने के लिए जो इतना फेमस गाना हो गया बाद में, अभी तक इट्स लाइक सच अ पॉपुलर सॉन्ग, सच अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, कुमार सानू साहब ने गाया है. आर डी बर्मन साहब इस गाने के लिए नई आवाज़ चाहते थे, और सोनू निगम उस समय टीवी के थ्रू सेंसेशन बन गए थे विद सारे गामा एंड ये अच्छा सिला, ये भी इसका ऑडियो रिलीज हो गया था. मतलब सोनू निगम नज़र में आने लगे थे लोगों की, बट कुमार सानू साहब एक के बाद एक अवार्ड्स जीत रहे थे, एंड ही वॉज also a phenomenon. He was already an established phenomenon. Sonu Nigam was a struggling phenomenon. तो इस गाने के लिए उन्होंने, इस गाने के साथ कहानी ये है कि ऐसा प्लान था कि कुमार सानू साहब को लेट आने की आदत थी, तो अगर कुमार सानू साहब नहीं आएंगे टाइम पर तो ये गाना सोनू निगम साहब को मिल जाएगा. तो सोनू निगम साहब ने बड़ा प्रे किया कि कुमार सानू साहब इस गाने के लिए, इसके गाने की के लिए लेट आए और नहीं इसकी रिकॉर्डिंग कर पाए तो सोनू निगम साहब को ये गाना मिल जाए. लेकिन कुमार सानू साहब आ गए टाइम पे और ये गाना उन्हीं के पास आ गया. बट कहते हैं ना कि आई थिंक दे बोथ आर सच ग्रेट सिंगर्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और व्हेन इट कम्स टू आई थिंक क्राफ्ट एंड द डेडिकेशन एंड स्पेशली टू द नॉलेज ऑफ सिंगिंग, आई थिंक सोनू निगम का तो कोई मैच ही नहीं है. लेकिन हैविंग सेड दैट, 90s में जो मेरी तरह लोग बड़े हुए हैं उनके लिए कुमार सानू की आवाज़ से बड़ी कोई आवाज़ नहीं है. सो दे बोथ आर ग्रेट इन देयर ओन सेंस. और बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय हिमालयन बाजार. डिस्कवर हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी, सर्विंग द एंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स एंड एवरीडे एसेंशियल्स. एंजॉय हॉट समोसास, पानीपुरी, मसाला चाय एंड कॉफी व्हाइल यू शॉप. मेरे मुंह में आ गया है पानी. कंपेरेटिव प्राइजेस, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50 विद इन 5 miles एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स विद एवरी परचेज. ये दे आर जस्ट ऑफ हाईवे 360 साउथ एट 5103 मैग्ना कार्डा बुलेवार्ड, ग्रैंड परेरी, हिमालयन बाजार, वेर एवरी आइल फील्स लाइक होम. और यही तो हमारी कोशिश होती है फनीशा में, कि जो भी हम बात करें और जो भी गाने सुने और जो आप लोगों के साथ जो भी कनेक्शन बने वो घर की बात हो, घर, यू नो, बिकॉज वन वी फील एट होम, वी फील एट हीज एंड वी फील हैप्पी, एंड दैट इज रियली अर गोल, दैट वी मेक यू फील एट होम एंड फील हैप्पी. क्योंकि मैं भी बिल्कुल घर की तरह ही मुझे यहाँ फील हो रही है. मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं दिल्ली में हमारी गलियों में कहीं बैठ के बात कर रही हूँ. बट आप लोगों को ऑल्सो आई डू वॉन्ट से, एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद यहीं लौट कर आएंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू एंड मैं आप लोगों के साथ रहूँगी 7 बजे के बाद भी, और मैं 9 बजे तक रहूँगी आप लोगों के साथ. फिलहाल आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती चली जाती हूँ, विच इज़ अबाउट एजी फिनटेक्स. दिस पार्ट ऑफ अ शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. दे आर वन ऑफ द fastest growing tax and accounting firms in the United States. तो जहां आप एक इंडिविजुअल है या फिर आपका स्टार्टअप है या फिर आपका एस्टैब्लिश बिजनेस है, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स, फ्रॉम बुककीपिंग, पेलर अकाउंटिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉन्सिलेशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है एंड दे आर कमिटेड टू योर सक्सेस. AG Fintechs is your partner in building a strong financial future. आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर है 4699429888 एंड यू कैन विजिट agfintechs.com आज ही. थोड़े से एक मिनट में, चंद मिनट, एक ही मिनट बचा है एंड वी विल बी हेडिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. पर आप जहां भी जा रहे हैं जाइए, लेकिन पारो की आवाज़ और फनीशे की आवाज़ और हमें 104.9 को अपने साथ रखिए, अपने दिल में रखिए, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है. थोड़ी पोजेसिव है वैसे. बट प्लीज़ इफ़ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड एंड यू हैव नॉट कॉल्ड येट, यू कैन स्टिल कॉल. वी गोना टॉक अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था दैट देयर इज अ, टुडे इज अ स्पेशल डे, 31st August, और क्यों है स्पेशल, किस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आई एम गोना टेल दैट in a little bit.